नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपकी आवाज में, सिर्फ और सिर्फ वागर रेडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं दिन का ये खूबसूरत सफर हर रंग के साथ में। साथियों, सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना आप सुन पाएंगे। हर सुबह की शुरुआत हो ईश्वर के नाम के साथ। आरती, भजन और मन को शांति देने वाला ये कार्यक्रम समर्पित है आराधना को। तो जुड़िए प्रभु स्मरण में और कीजिए अपने दिन का शुभारंभ। इसी के साथ साथियों, अगला कार्यक्रम है 6:30 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। किसान हमारे अन्नदाता है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह, ताकि खेत भी मुस्कुराए और अन्न भंडार भी भरे। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी के मैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है सच्चा बचपन। इसे आप सुन पाएंगे 7 बजे। श्रोताओं, बचपन की कहानियाँ, नैतिक शिक्षा और बच्चों के लिए मनोरंजन का खजाना, प्यारे नन्हे श्रोताओं के लिए एक खास कार्यक्रम जहाँ हंसी, ज्ञान और संस्कार साथ चलते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। आप सुन पाएंगे 7:30 पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को, युवा शक्ति देश की असली ताकत। इस कार्यक्रम में उठेंगे युवाओं के मुद्दे, मिलेंगी करियर गाइडेंस, मोटिवेशंस और नए विचारों को मंच। जुड़िए और बनिए बदलाव की आवाज में। इस कार्यक्रम को लेकर आती है आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी के मैं। अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8 बजे सच्चा स्वराज। जी हाँ साथियों, स्वराज सिर्फ राजनीतिक नहीं, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में सुनिए स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और जानिए आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी के मैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे 8:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आप सुनेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास, लोक संगीत में बसती है हमारी आत्मा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों ढोलक, बांसुरी और मंजीरी की ताल पर झूमने के लिए। अगला कार्यक्रम सुन पाएंगे 9 बजे हमारा स्वास्थ्य। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर। साथियों, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, इस कार्यक्रम में जानिए घरेलू नुस्खे, डॉक्टरी सलाह और योग से जुड़ी बातें और खुद को रखिए तंदुरुस्त हर रोज। आगे बढ़ते हुए सुनेंगे कार्यक्रम समस्या समाधान। इसे आप सुन पाएंगे 9:30 पर और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। साथियों, आपको कार्यक्रम की रूपरेखा तो बता ही रही हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे 10 बजे और 10 बजे कार्यक्रम आता है हमारी बात आपके साथ। साथियों, ये कार्यक्रम समाज के मुद्दे, संवाद का एक मंच, आप कहिए हम सुने, क्योंकि आपकी बातों में है वो ताकत जो

बदलाव ला सकती है। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 10 बजे और इसे लेकर आएंगे हमारी रेडियो साथी। दोपहर 11 से 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। आपकी फरमाइश सिर्फ आपके नाम, आपके पसंदीदा गानों की फरमाइश आपके संदेशों के साथ। आप अपने संदेश हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234 और आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं वागर रेडियो 90.8 FM पर। श्रोताओं, बजेंगे वही गाने जो आपके दिल की धड़कन है, तो जुड़े रहिए वागर रेडियो पर, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज है सबसे खास। तो श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की प्रातः कालीन सभा में प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

संतानों के भविष्य को सुख से भरने का प्रयत्न करना, यही हर माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है। जिन्हें आप इस संसार में लाए और जिनके कर्मों से ये जगत आपका भी परिचय पाएगा भविष्य में, उनके भविष्य के सुख की योजना करने से अधिक महत्व और हो भी क्या सकता है। किंतु सुख और सुरक्षा क्या ये मनुष्य के कर्मों से प्राप्त नहीं होते?

0: माता पिता के दिए हुए अच्छे या बुरे संस्कार, उनकी दी हुई योग्य अथवा अयोग्य शिक्षा, क्या आज के सारे कर्मों का मूल नहीं? संस्कार और शिक्षा से बनता है मनुष्य का चरित्र। अर्थात माता पिता अपनी संतानों का जैसा चरित्र बनाते हैं, कैसा ही बनता है उनका भविष्य। किंतु फिर भी अधिकतर माता पिता अपनी संतानों का भविष्य सुरक्षित करने की चिंता में उनका चरित्र निर्माण का कार्य भूल ही जाते हैं। वस्तुतः जो माता पिता अपनी संतानों के भविष्य की चिंता करते हैं, उनकी संतानों को कोई लाभ नहीं होता। किंतु जो माता पिता अपने संतानों के भविष्य की नहीं, उनके चरित्र का निर्माण करते हैं, उन संतानों की प्रशस्ति समस्त संसार करता है। स्वयं विचार कीजिए। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती है? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां, नई नई विडंबनाएं, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पद पर वो अपने अगले पद का निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है, कहीं पुरानी योजना उसे खाई में ना ढकेल दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखा है, तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरावा हंगरे किसान भाई बोन ने आपने बोन जागृति ने आपने बोन अंजलि नु राम राम, राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM ने आप सबनो स्वागत कर हूं अपने आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में।
1: होवे किसान भाई बोनो अमे हमारे टाइम माते हाजिर थे के हां कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाते। तो जागृति बोन आज अपने किसान भाई बोन की बातचीत नो विषय है के अपने जे किसान भाई बोन है ये जैव विविधता ना महत्व ने हरते हमजे ने हरते आने संरक्षित करीने राखी शके।
0: होवे तो अंजलि बोन अना विषय में आज अपने बातें तो करंगा पण कार्यक्रम की शुरुआत में अपने हमरी लागित ने मोरे करा अपनी बातें।
1: होवे तो किसान भाई बोन आप हमबरतो रहो अपनो रेडियो अपनी बातें वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: અંજલિબોન, ગીત તો આવી શું પૂરું અને ગીત ને બાદ એક વખત ફેરી આપણે કિસાન ભાઈ બહેનો નું સ્વાગત છે આપણે આજના કાર્યક્રમ ખેતીવાડી માં. જેમ કે ગીત કે પહેલા આપણે વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતે કરવા રહ્યા જે વિવિધતાને બારે મેં.
1: હવે તો જાગૃતિ બોન, અણ વિષય માટે જાણકારી આલવા બદલે આજે આપણે સ્ટુડિયો મેં પધાર્યા તકે હે શ્રીમાન પ્રમોદજી રોકડિયા સાહેબ. તો સપ્તકી પહેલે આપણે હામરી લે એણની હંગરી વાતે ને મોરે કરા આપણી વાતે.
0: હવે
1: સર નમસ્કાર.
2: નમસ્કાર
1: સર, આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
2: વાગડ રેડિયો કે સભી શ્રોતાગણ સભી કો બહોત બહોત નમસ્કાર.
1: સર જૈસા કી આપ જબ ભી હમારે કાર્યક્રમ સે જુડતે હૈ તો હમારે કિસાન ભાઈ બહેનો કો આપ બહોત અચ્છી જાણકારી દેતે હૈ ખેતી સે જુડી હુઈ. તો આજ ભી સર હમારે બીચ મેં એક નયા વિષય જુડને જા રહા હૈ. આજ હમ આપસે જાનને વાલે હૈ કે જૈવ વિવિધતા ક્યા હૈ ઓર કિસ તરીકે સે હમારે જો કિસાન ભાઈ બહેન હૈ ઇસકે મહત્વ કો સમજ સકતે હૈ.
2: किसान भाइयों, जैसा अपन बात कर रहे हैं कि जैव विविधता मतलब जितने भी पौधे हैं या जितने भी जीवित प्राणी हैं, पौधों को अपन प्राणी कहते हैं
1: जी हाँ,
2: और दूसरे भी प्राणी अपन जैसे प्राणी जगत के होते हैं, जैसे अपना जितने भी पशु हैं, कीड़े हैं, ये सब जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं
1: जी बिल्कुल.
2: लेकिन हमारा क्या है किसान साथियों से, तो ये है कि हम पौधों के बारे में ज्यादा बात करेंगे. तो पौधों की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण जो है वो एक ही जगह पर हो, हमारे जो वातावरण में हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें जो भी उपलब्ध है
1: जी जी,
2: तो उसको बचाए रखना, उसका संरक्षण करना, उसको आगे तक लाना, तो ये जैव विविधता कहलाती है
1: जी बिल्कुल.
2: जैसा कि अपन देखते हैं कि अपने यहाँ पे अगर अपन खाने वाली फसलों की बात करें तो मक्का भी होता है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ चावल भी होता है
1: जी हाँ,
2: हमारे यहाँ चना भी होता है, गेहूँ भी होता है, उड़द भी होती है, मूंग भी होती है, ये तो हमारे जो दालें सोयाबीन भी होती है
1: जी जी,
2: तेल वाली फसलें हैं, तिल है, सरसों है, सूरजमुखी है, ये जितनी भी प्रजातियां हैं चाहे खाने की फसलों की हो, सब्जियों की फसलों की हो, फलों की हो, जो बहुवर्षीय वृक्ष हैं उनका हो, है ना, ये जितने भी हैं बेल वाली सब्जियां हैं
1: जी जी,
2: तो ये जितने भी हमारी विविध प्रजातियां हैं फसलों की, वेजिटेबल की, फलों की, इनका एक जगह रखना, ये जैव विविधता कहलाती
1: है जी बिल्कुल सर.
2: तो ये हमारे जैव विविधता, क्योंकि हमारे जो अपन देखते हैं कि अपना जो हम जो भोजन लेते हैं तो उसमें विभिन्न घटक होते हैं हमारे
1: जी बिल्कुल,
2: जैसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, फैट है, मिनरल्स है, ये 5 तत्व मुख्य है जो हमारे भोजन के रूप में हम इसको अपने आहार में लेते हैं
1: जी बिल्कुल,
2: और उसी से हमारे शरीर का पोषण बनता है, हमारा कहो जितने पशुओं का कहो सबका पोषण इसी से बनता है
1: जी हाँ,
2: और हमारा जो मुख्य स्रोत है ये हमारे पौधे हैं
1: जी बिल्कुल सर.
2: तो सब पौधों की अपनी अपनी विशेषता होती है, कोई पौधा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा देने में है, जैसे कुछ है दलहनी फसलें हैं तो वो प्रोटीन देते हैं, सब्जियां वगैरह विटामिन को ज्यादा देते हैं
1: जी हाँ,
2: कुछ तेल वाली फसलें होती है जैसे तिल है या सोयाबीन है, सरसों है, तो ये तेल देती है जो फैट का रूप में हमारे भोजन में वो उसका पोषण करती है. तो इस तरह से जो हमारे भोजन के विभिन्न घटक हैं उनको पूर्ति करने के लिए विभिन्न फसलें हैं
1: जी बिल्कुल,
2: तो वो फसलें हमारी जैव विविधता कहलाती है. और विविधताएं जो सृष्टि के अंदर जो वातावरण में जो पौधों को विभिन्नताओं के साथ उगाने की क्षमता है हमारे शरीर के आहार के लिए उसको उपयोगी है, तो उसको कहते हैं जैव विविधता. इस तरह से हम जैव विविधता को कई तरह से समझ
1: सकते हैं.

0: तो जितनी भी फसलें हैं उनमें अलग अलग क्षमता है
1: जी बिल्कुल।
0: अगर हम एक ही तरह की फसल करते हैं तो अगर जैसे बारिश तेज हो गई तो वो हाँ। सारा की सारी फसलें चौपट हो सकती है। तो हमें जब किसान हमारा समुदाय है तो हमें उस तरह का, क्योंकि वो हमें ज्ञान भी है कि कौन सी फसलें ऐसी है जो कम पानी में पक जाती हैं, कोई ऐसी फसलें हैं जिनको पानी ज्यादा चाहिए
1: हाँ।
0: किसी के पकने की जो दिन है वो कम है, किसी के दिन पकने के ज्यादा है
1: जी बिल्कुल।
0: एग्जांपल तो अपन पता ही लगा ना, जैसे मक्का है अपना 90 दिन में पक जाती है जबकि हमारा सोयाबीन है वो 120 दिन तक भी पकता है
1: जी बिल्कुल।
0: उसी तरह से हम कपास देख रहे हैं तो कपास हालांकि खाने के लिए नहीं काम आती लेकिन हमारे बिनौले के रूप में पशुओं के लिए तो काम में आती है
1: जी बिल्कुल।
0: दूध बनाने के हिसाब से भी काम आती है, उसका तेल भी बनता है कपास का तेल
1: जी जी।
0: तो ये भी हमारे खाने में आ जाता है
1: कुछ।
0: तो इनके जो पकने की समय है, चावल है उसका ज्यादा समय लगता है
1: जी बिल्कुल।
0: और जैसे उड़द है वो कम और कम समय में पक जाती है,
1: मूंग
0: कम समय में पक जाती है। तो ऐसे समय इनके अलग अलग विभिन्न विभिन्न होते हैं और जलवायु जो है वो भी विभिन्न विभिन्न होती है, कभी लेट भी बरसात होती है कभी जल्दी बरसात होती है
1: जी बिल्कुल।
0: तो अगर हमारे को उसका ज्ञान भी है और हमारे को उसका बीज भी हमारे पास है तो हम जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं और उनको अपने खेत पर लगाकर उसका उपयोग ले सकते हैं
1: जी।
0: तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाई जैव विविधता हमारे लिए क्यों महत्व रखती है, ताकि कभी ऐसी विभिन्न कोई ऐसी समस्या आ जाए
1: जी जी,
0: है ना, कभी बारिश तेज पड़ना, कम पड़ना, सूखा पड़ जाना, गर्मियां तेज पड़ जाना, तेज हवाएं चल जाना, तो हर फसल का अपना एक क्षमता है उसके अनुरूप वो हमारे को फसल का उत्पादन दे पाती है
1: जी बिल्कुल।
0: तो ऐसा ना हो कि हम एक ही फसल करें और वो ऐसी विभिन्न घटनाओं में विभिन्न परिस्थितियों में फंसे तो वो सारी की सारी समाप्त हो जाए, तो हम क्या खाना खाएंगे, किस तरह से हमारे उपयोगी आएगा। तो इसको देखते हुए जो जैव विविधता को संरक्षण करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है
1: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बताया कि हमारे जो किसान भाई बहन है वो विभिन्न प्रकार की फसलें करें जिससे कि हमारे जो किसान भाई बहन है वो समय के अनुसार, जैसा कि आपने कहा कि कभी भी बरसात हो जाती है, कभी भी अचानक गर्मी पड़ने लग जाती है, तो कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनका वर्षा के परिवर्तन से और जो धूप गर्मी पड़ रही है उससे परिवर्तन उसमें हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। कुछ फसलें जो है वो सहन कर सकती हैं, उनका उत्पादन हमें मिल पाता है, लेकिन कुछ फसलों का हमें नहीं मिल पाता है, तो कम से कम हमारे पास कुछ तो ऐसी आशा रहेगी कि इससे नहीं तो दूसरी फसल से हमें कुछ न कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा।
0: बिल्कुल, यही है। और जैसे कई बार अपन देखते हैं कि अब इसको कैसे हम बचाएं, एक ही किसान है अभी हमारा खेत, तो जैसे एक किसान का 2-2.5 बीघा 3 बीघा खेत है
1: जी बिल्कुल।
0: अब वो उसमें देखे कि साहब मैं ऐसी सारी कैसे करूं
1: जी,
0: मैं तो एक केल मक्का कर रहा हूँ अकेला, या तो मैं केवल चावल ही कर रहा हूँ
1: जी हाँ,
0: या मैं केवल कपास ही कर रहा हूँ। तो उसके लिए अपन ये कहा जाता है कि मिश्रित खेती करो
1: जी बिल्कुल सर।
0: मिश्रित खेती में क्या होता है कि एक ही जो है वो एक ही खेत के अंदर उसमें इस तरह से तकनीक लगाकर कई सारी फसलों का समावेश कहता है
1: जी बिल्कुल।
0: अभी अपन देखते हैं कि हमारे यहाँ जैसे अभी दक्षिण राजस्थान में अपन बात करते हैं, हमारे कुछ किसान तो इस मिश्रित खेती का इतना उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते हैं कि एक ही खेत के अंदर उसका भले 3-4 बीघा का खेत है लेकिन एक ही खेत में 13-15 तक प्रजातियां, 13 तक फसलें वो उसके एक ही खेत में लगती
1: लेता है।
0: तो ये मिश्रित फसल का कार्य है। मिश्रित फसल कैसे की जाती है उसका भी अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि कई है जिसको कहते हैं एकल फसल कहते हैं
1: जी जी,
0: जिसमें केवल एक तरह का फसल ली जाती है, उसमें केवल मक्का है तो मक्का ही मक्का है, सोयाबीन है तो सोयाबीन सोयाबीन, तो उसको कहते हैं एकल फसल
1: जी बिल्कुल।
0: इसमें एक खेत के अंदर एक ही फसल ली जाती है और एक होता है मिश्रित फसल, जैसे आप अपन बात कर रहे हैं मिश्रित फसल में एक ही खेत में कई सारी फसलें ली जाती हैं
1: जी।
0: लेकिन उसका जो किस तरह से हम उसको बुआई की जाए, किस तरह से उसको लगाया जाए
1: क्योंकि बिल्कुल
0: कई फसलों को अगर देखते हैं तो जैसे अपन बात करें ना कि कईयों के तो पकाओ के दिन अलग अलग होते हैं, कई फसलें ऐसी होती हैं जिनके जड़ों की गहराइयों में फर्क होता है
1: जी बिल्कुल,
0: कई फसलें ऐसी होती हैं जिनके फैलाव में फर्क होता है, तो उनका उपयोग करते हुए उनकी जानकारी रखते हुए हम मिश्रित फसल का जो हमारा लेआउट करते हैं और उसको खेत में लगाते हैं
1: जी बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: जैसे अपन देखते हैं कि मक्का की 2 कतारों के बीच में थोड़ी जगह हो तो उसमें हम देखते हैं 2-3 कतारें लगाई, उसके बाद में जगह बच रही है तो उसके अंदर हम बीच में छोटी फसल लगाते हैं
1: जी बिल्कुल,
0: उसमें चाहे उड़द लगा ली है ना, या ऐसे सोयाबीन लगा ली, और कई बार जैसे देखते हैं कि मक्का के साथ में कपास लगाते हैं
1: जी बिल्कुल।
0: तो मक्का की तो पकाव अवधि बहुत कम है और लेकिन कपास की पकाव अवधि बाद में ज्यादा, तो जब तक मक्का की फसल पूरी हो जाती है तब तक कपास के पौधे बहुत छोटे होते हैं
1: जी बिल्कुल,
0: और जब उसको कपास के पौधे बड़े होते हैं जब तक मक्का का तो पकाव हो ही जाता है
1: क्योंकि
0: वो तो 6-7 महीने तक जाती है कपास, तो जबकि मक्का तो है वो 3 महीने में खत्म हो जाती है
1: जी बिल्कुल।
0: तो इस तरह से जो जानकारी होती है तो उसके साथ में हम उपयोग कर सकते हैं। अभी जड़ों की बात भी अपन कर रहे थे, जड़ें भी देखें तो मक्का की तो जड़ें हैं वो बहुत ज्यादा गहरी नहीं जाती
1: जी, बिल्कुल
0: केवल अपने जमीन से जो है मिट्टी के

0: अंदर करीब 6 इंच तक तक जाती है, बहुत जाती नहीं है, जबकि कपास की है, कपास की जड़ें बहुत गहरी जाती है
1: जी बिल्कुल सर।
0: उसका जड़ों का जो मूसला जड़ होती है, इसमें झगड़ा जड़ होती है, हमारे सभी किसान भाई जाते हैं मूसला जड़ क्या होती है, झगड़ा जड़ क्या होती है, मूसला जड़ वो होती है जो अपना सीधी तरह से जो एक गहरे तक जमीन में जाती है
1: जी बिल्कुल,
0: जैसे मक्का की हुई, अभी अपन अरहर की कहो, ये इस तरह से, और झगड़ा जड़ जैसे जो शेलो हो रहती है, यानी कि जो सतह पे बहुत ज्यादा फैल
1: जाती है जी बिल्कुल,
0: और ज्यादा गहरी नहीं होती, जैसे मक्का की जड़ है, ये इस तरह की जड़ें होती हैं। फिर कुछ जड़ें ऐसी भी होती हैं कि जैसे अपने उड़द की हैं या दालें वाली फसलों की हैं, वो बहुत ज्यादा गहरी नहीं होती है
1: जी जी,
0: लेकिन वो थोड़ी बिखरी हुई होती है, तो उनमें भी है। तो इस तरह से जड़ों के गहराई में जो फर्क होता है, पौधों के फैलाव में फर्क होता है
1: जी जी,
0: और पौधों की लंबाई में फर्क होता है। मक्का का पौधा लंबा होता है, जबकि हमारे उड़द का, मूंग का ये पौधे छोटे होते हैं, सोयाबीन के पौधे छोटे होते हैं, तो इस तरह से उनका बुआई इस तरह से की जाती है
1: जी।
0: फिर साथ में हम सब्जी वाली फसल भी लगा लेते हैं, जैसे कि अंदर कई सारी ऐसी सब्जी जैसे ककड़ियां वगैरह हैं, वो लगाते हैं बीच बीच में, तो किसान उसको भी लगा लेता है, किसान उसी में तेल भी लगा लेता है, किसान उसके अंदर कपास लगाता ही है और उसके अंदर चावल भी लगाता है।
1: तो इस तरीके से हमारे किसान,
0: इस तरह से कई सारी फसलें एक ही खेत के अंदर मिश्रित फसल में लगाई जाती है
1: जी,
0: उसमें सब्जियों का भी होता है, उसके अंदर फलों का अपने मुख्य फसलें भी होती है, और जो हमारे खेत के चारों तरफ है वो फलदार वृक्ष भी लगाया जाता है
1: जी बिल्कुल।
0: क्योंकि जो ज्यादातर हमारे जो किसान है अपने खेत पर ही अपना घर बना कर रहते हैं
1: जी हाँ,
0: तो उनका एक घर पूरा एक फार्म हाउस टाइप बन जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में तो फार्म हाउस कह रहे हैं
1: जी बिल्कुल,
0: बड़े बड़े जो है उसमें तो फार्म हाउस की चलन चल चुका है, लेकिन हमारे यहाँ तो फार्म हाउस का पहले से चलन है
1: जी बिल्कुल।
0: हम तो हमारा जो किसान है वो अपने खेत पे रहना पसंद करता है
1: जी हाँ,
0: और उसी में अपना घर बना कर रहता है, उसके घर के पिछवाड़े में वो नींबू का पौधा भी लगाएगा, पपीते का पौधा भी लगाएगा, अमरूद का पौधा भी लगाएगा, उसके खेत के बाउंड्री पे आम के पौधे भी होंगे
1: जी जी,
0: उसके महुआ के भी होंगे और उसके सीताफल के भी पौधे होंगे, तो कितने ही सारे उसके पौधे होते हैं और कितने ही सारे उसकी फसलों के बार बार उसका साल भर का जो उसका चलन होता है उसके ऊपर होता है। तो इस तरह से मिश्रित फसल के कई सारे आयाम होते हैं, और उसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जमीन की एक एक इंच का उपयोग करें
1: जी बिल्कुल,
0: और साल भर हमारे उपज को बनाए रखें और हमारे जो विविधता बना रखें, ताकि हमारे कभी भी विपरीत परिस्थिति के अंदर हमारे को अनाज की, फल की, सब्जी की ये कमी ना हो
1: जी बिल्कुल।
0: और साल भर अगर उसको अपन दूसरे रूप में भी कहें तो मिश्रित फसल का और जो विविधता को संरक्षण का ये भी एक तरीका रहता है कि हमें आय का साधन भी वर्ष पर्यंत बना
1: मिला रहता जी बिल्कुल सर।
0: पोषण तो मिलता ही है और उसके अंदर हमें साल भर तक हमें काम भी मिलता है और हमारा एक आय का जरिया बना रहता है
1: जी बिल्कुल।
0: तो इसलिए जो फसल विविधता है वो हमारे लिए किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है
1: जी बिल्कुल सर।
0: इसको की मेंटेन करना, और ऐसी फसल विविधता में इस तरह से बीज भी होते हैं कि जो हमारे पारंपरिक बीज चले आ रहे हैं, तो वो भी हमारे किसान उसको संरक्षित कर लेते हैं ताकि वो आने वाले, क्योंकि उनमें इस तरह से किस्में हैं कि जिसमें ऐसी ताप सहन करने की, बारिश सहन करने की और सर्दी सहन करने की इसमें ताकत है
1: जी बिल्कुल।
0: तो उन पुराने बीज जो हैं, क्योंकि वो चले आ रहे हैं आज के नहीं है, तो वो ऐसी विपरीत परिस्थितियों को सहन करते आ रहे हैं और बच्चे में, तो उनमें वो ताकत तो इनबिल्ट है
1: जी बिल्कुल।
0: तो इसलिए से वो जो फसल विविधकरण है उसके माध्यम से हम जैव विविधता का संरक्षण करते हैं और जैव विविधता हमारे जो पूरे जो प्राणी जगत है उसको काम में आती है
1: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आज अपने कार्यक्रम में हमारे किसान भाई बहनों को बहुत अच्छी तरीके से बताया कि जैव विविधता क्या है, साथ ही आपने ये भी बताया कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो जैव विविधता को कैसे बचा सकते हैं, आपने बताया कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो मिश्रित खेती कर सकते हैं, साथ ही अपनी जमीन के एक एक इंच का प्रयोग भी वो अच्छे तरीके से करें ताकि उनके 12 महीने साल भर जो है उसमें उनकी आजीविका बहुत अच्छी तरीके से बनी रहे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारे किसान भाई बहनों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी।
0: धन्यवाद सर।
2: अंजलि बोन जिम के आज रोकड़े साहब आए तो ने अपने घना की बातें बताड़ी कि जैव विविधता हूँ केवाय ने जैव विविधता नु हूँ महत्व है।
1: तो जागृति बोन आ सब बातें हम जी ने अपने जो किसान भाई बोन है ये जैव विविधता ना जे भी रूप है एना ने अपनावेगा ने एना ने जीवन ने सफल बनावेगा। तो जागृति बोन अवे अपने देखी रहो के टाइम थे गयो है अपने अणस कार्यक्रम तक सूटो पड़वा, तो अपने सूटा पड़ा पर जाते पहले हामरी लाए कोर गीत ने मोरे पड़ा सूटा
2: होवे।

0: अंजलि बोन गीत तो आई पुरन अड़स की धाते पड़ा सूटा आशा करा की आज जे भी बातें करी कार्यक्रम खेती बाड़ी में जे विविधता ने लई ने ये अपने किसान भाई बोन ने गमे होंगे। तो किसान भाई बोन आपने अमारो आज नो कार्यक्रम केव लगे एना बारा में आप राय सुझाव आली सको अपने अना पता माते।
1: तो किसान भाई बोन लखी लो अमारू पतु, अमारू पतु है कार्यक्रम खेती बाड़ी वागड़ रेडियो 90.8 FM कॉम्पोस्ट कुपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारो पिन कोड नंबर है 3270001। हजी वधारे जानकारी बल्ले आप मने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9460051234।
0: तो किसान भाई बोन फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम में एक नवा विषय ने हाथे तारू दी
1: राम राम
0: राम राम, राम, राम।

0: जागृति बुंद, आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुंद हूँ था का
0: अरे जागृति बुंद आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएंगा खेतर मंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुंद एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुंद, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुंद, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जी हां श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन को अपने नियत समय पर और एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों, हमारी बातचीत का विषय ही स्कूल बस स्टॉप को लेकर। जी हाँ श्रोता साथियों, हर सुबह जब बच्चे अपने अपने स्कूल जाने के लिए घर से निकलते हैं तो उनके साथ कई सपने भी सफर पर निकलते हैं। कोई नया पाठ सीखने की खुशी लेकर चलता है, कोई अपने दोस्तों से मिलने की उत्सुकता लेकर चलता है, तो श्रोता साथियों कोई अपने भविष्य को बेहतर बनाने का सपना लेकर। लेकिन श्रोता साथियों, इस पूरे सफर की शुरुआत एक छोटी सी जगह से होती है, वो है श्रोता साथियों बस स्टॉप। अक्सर श्रोता साथियों हम देखते हैं कि बस स्टॉप को केवल हम बस का इंतजार करने की जगह समझ लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यहीं से बच्चों में अनुशासन, धैर्य, सहयोग और सुरक्षा जैसी अच्छी आदतें विकसित होती हैं। कभी कभी बस आते ही कुछ बच्चे जल्दी से चढ़ने की कोशिश में धक्का मुक्की करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि पहले चढ़ जाने से जल्दी अपनी सीट पा लेंगे, लेकिन श्रोता साथियों यही जल्दबाजी कभी कभी किसी छोटे बच्चे को गिरा सकती है, किसी का बैग फंसा सकती है या कोई गंभीर दुर्घटना भी हो सकती है। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विषय से तो रूबरू कराई चुकी हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं स्कूल बस स्टॉप को लेकर। जी हाँ श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि कभी कभी बस आते ही कुछ बच्चे जल्दी जल्दी चढ़ने की कोशिश में धक्का मुक्की करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि पहले चढ़ जाने पर उनको पहली सीट मिल जाएगी या कोई अच्छी सीट है वो उन्हें मिल जाएगी। लेकिन श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि इसी धक्का मुक्की के चक्कर में किसी बच्चे को चोट लग जाती है, किसी का बस्ता फंस जाता है या कोई बच्चा गिर जाता है। श्रोता साथियों, सुरक्षा केवल अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथ खड़े हर बच्चे की जिम्मेदारी है। एक समझदार विद्यार्थी वही है जो खुद सुरक्षित रहे और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखे। इसी सोच और सीख के साथ आइए श्रोता साथियों सुनते हैं आज का प्रेरणादायक नाटक, बस का इंतजार करते समय धक्का मुक्की न करें।
1: अरे, आज बस आने में इतनी देर क्यों हो गई? मुझे तो लग रहा है कि आज फिर भीड़ बहुत होगी।
2: बस 5 मिनट देर हो जाए तो सबको लगता है कि आज बहुत देर हो गई।
1: तुम्हें चिंता नहीं होती क्या?
2: नहीं चार्वी, चिंता बस देर से आने की नहीं होती। चिंता तब होती है जब बस आते ही सब बच्चे बिना सोचे समझे दौड़ पड़ते हैं।
1: अरे, थोड़ा बहुत धक्का मुक्की तो चलता है, नहीं तो सीट कैसे मिलेगी?
2: तुम्हें सच में ऐसा लगता है?
1: हाँ, जो पहले चढ़ गया वही आराम से बैठेगा ना।
2: और अगर उस जल्दी में कोई छोटा बच्चा गिर जाए तो?
1: हाँ, ऐसा भी हो सकता है।
2: हो सकता है नहीं, कई बार होता है। पिछले महीने मैंने देखा था कि एक बच्चा धक्का लगने से गिर गया था और उसके हाथ में गंभीर चोटें आई थी और कई दिनों तक वह स्कूल भी नहीं आ पाया था।
1: सच में?
2: हाँ सच में। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये थी कि धक्का देने वाला बच्चा जानबूझकर बुरा नहीं करना चाहता था, वह सिर्फ जल्दी में था।
1: मतलब कभी कभी हमारी जल्दबाजी किसी दूसरे के लिए परेशानी भी बन सकती है।
2: हाँ बिल्कुल बन सकती है। इसलिए अनुशासन का मतलब सिर्फ नियम मानना नहीं होता चार्वी, बल्कि दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है।
1: लेकिन अगर हम लाइन में खड़े रहे और दूसरे बच्चे धक्का देकर आगे निकल जाए तब क्या करें?
2: अच्छी आदतें इसलिए नहीं छोड़ी जाती कि दूसरे उनका पालन नहीं कर रहे हो। कोई तो शुरुआत करेगा ही ना। अगर हम सही उदाहरण बनेंगे ना चार्वी, तो धीरे धीरे दूसरे भी हमारी बातों को सीखेंगे।
1: तुम्हारी बातें सुनकर नैना, मुझे लगता है कि बस स्टॉप भी सीखने की जगह है।
2: बिल्कुल है। किताबें हमें पढ़ाई सिखाती है, लेकिन रोजमर्रा की ऐसी जगह है वो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। तभी दूर से स्कूल बस दिखाई देती है, कुछ बच्चे आगे बढ़ने लगते हैं, चार्वी भी उत्साहित होकर एक कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन फिर नैना की बात याद करके रुक जाती है।
1: नहीं, आज मैं लाइन नहीं तोड़ूंगी।
2: हाँ, यही तो समझदारी है।
1: नैना, देखो सब कितनी जल्दी कर रहे हैं। अगर हम ऐसे ही खड़े रहे तो शायद हमें सीट नहीं मिलेगी।
2: सीट तो बाद में भी मिल जाएगी चार्वी, लेकिन अगर किसी को चोट लग गई तो वह दर्द जल्दी नहीं जाएगा।
1: पहले मैं भी यही सोचती थी कि जो तेज दौड़ेगा वही जीत जाएगा, लेकिन आज लग रहा है कि हर जगह दौड़ना समझदारी नहीं होती।
2: बिल्कुल, कुछ जगहों पर धैर्य ही सबसे बड़ी समझदारी होती है, पता है तुम्हें?
1: रुको, पहले इसका बैग उठा लेते हैं। लो, आराम से जोड़ो, कोई जल्दी नहीं है।
2: देखा चार्वी, अगर तुम भी भीड़ के साथ दौड़ जाती तो शायद ये बच्ची और ज्यादा घबरा जाती।
1: सच कहूं, अभी मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पहले सिर्फ
2: मैं अपनी सीट के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब समझ में आया कि किसी की मदद करना सीट मिलने से कहीं ज्यादा खुशी देता है।
3: बिल्कुल, यही तो असली शिक्षा है। अच्छा विद्यार्थी केवल किताबों से अच्छा नहीं होता, बल्कि अपने व्यवहार से भी अच्छा होता है।
2: नैना, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी एक अच्छी आदत से दूसरे बच्चे भी बदल सकते हैं?
3: क्यों नहीं चार्वी, अच्छी आदतें फैलती भी तो है। जैसे एक बच्चा लाइन में खड़ा होता है, फिर दूसरा भी सोचता है कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। एक बच्चा किसी की मदद करता है तो बाकी बच्चों को भी तो इससे प्रेरणा मिलती है।
2: मतलब बदलाव हमेशा कह सकते हैं नैना कि एक इंसान से शुरू होता है।
3: बिल्कुल, अगर हम ये सोच कर चुप रहें कि सब ऐसा ही करते हैं तो कभी कोई बदलाव नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर हम सही काम करना शुरू करें तो धीरे धीरे हम माहौल बदल सकते हैं।
2: नैना, देखा, सीट तो नहीं मिली,
3: लेकिन चार्वी मन की खुशी तो मिल गई ना।
2: और सबसे बड़ी बात, आज किसी को हमारी वजह से चोट भी नहीं लगी।
3: बिल्कुल, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है।
2: नैना, आज से मैं हर सुबह बस स्टॉप पर सबसे पहले लाइन बनाने की कोशिश करूंगी। और अगर कोई धक्का देगा तो मैं गुस्सा नहीं करूंगी, प्यार से समझाऊंगी कि सुरक्षित रहना सबसे जरूरी है।
3: बिल्कुल चार्वी, यही जिम्मेदार विद्यार्थी की पहचान है।
0: श्रोता साथियों, आज के इस छोटे से नाटक ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। अक्सर हम सोचते हैं कि बस में सबसे पहले चढ़ जाना ही समझदारी है, लेकिन सच तो यह है कि सुरक्षित रहकर दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बस में चढ़ना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। केवल एक बुरी आदत नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि यह किसी दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। एक छोटी सी जल्दबाजी किसी बच्चे को गिरा सकती है, किसी का बैग सड़क पर गिर सकता है, किसी को गंभीर चोट लग सकती है, और कई बार श्रोता साथियों एक छोटी सी लापरवाही जीवन भर का पछतावा भी बन सकती है। इसलिए हर बच्चे को यह समझना चाहिए कि कुछ पल का इंतजार करना नुकसान नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। स्कूल हमें केवल किताबों का ज्ञान नहीं देता है बल्कि अनुशासन, सहयोग, धैर्य और जिम्मेदारी का पाठ भी पढ़ाता है। बस स्टॉप भी एक ऐसी ही जगह है जहां हम अपने व्यवहार को साबित कर सकते हैं कि हम अच्छे विद्यार्थी होने के साथ साथ जिम्मेदार नागरिक भी बन रहे हैं। जब हम लाइन बनाकर खड़े होते हैं, छोटे बच्चों को पहले चढ़ने देते हैं, धक्का मुक्की नहीं करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तब श्रोता साथियों केवल हम नियमों का पालन नहीं करते बल्कि दूसरों के जीवन की सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। प्रिय अभिभावकों और शिक्षकों, बच्चों को केवल यह न बताएं कि धक्का मुक्की मत करो, बल्कि उन्हें यह समझाइए कि उसके पीछे का कारण क्या है। श्रोता साथियों, जब बच्चे नियमों का महत्व समझते हैं तब वे उसे मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझकर निभाते हैं। बच्चों की अच्छी आदतें श्रोता साथियों घर, स्कूल और समाज तीनों जगहों से मिलकर बनती हैं। बच्चों याद रखिए, बस सबसे पहले पकड़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने साथ खड़े हर बच्चे को सुरक्षित रखते हुए बस में चढ़ना ही बहुत बड़ी बात है। अच्छी पहचान तेज दौड़ने से नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार से बनती है। अनुशासन हमें छोटा नहीं बनाता श्रोता साथियों, बल्कि हमारा व्यक्तित्व बड़ा बनाता है। जो बच्चा दूसरों की सुरक्षा का सम्मान करता है, वही आगे चलकर समाज का जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनता है। तो आइए बच्चों, आज यह संकल्प ले कि हम बस स्टॉप पर कभी धक्का मुक्की नहीं करेंगे, हमेशा लाइन बनाकर बस पर चढ़ेंगे और छोटे बच्चों, बुजुर्गों और जरूरतमंदों का ध्यान रखेंगे। जल्दबाजी नहीं, समझदारी को अपनी आदत बनाएंगे और हर दिन अपने अच्छे व्यवहार से दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेंगे। याद रखिए बच्चों, सुरक्षा से बड़ा कोई इनाम नहीं, अनुशासन से बड़ी कोई पहचान नहीं, धैर्य रखने वाला कभी हारता नहीं है बच्चों, और दूसरों का ध्यान रखने वाला कभी छोटा नहीं होता। एक छोटी सी अच्छी आदत पूरे समाज को सुरक्षित और सुंदर बना सकती है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ ही श्रोता साथियों, आज के कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के इस गीत के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, जो नाटक रहा, वो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
3: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
4: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
6: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
5: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
6: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
5: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
6: लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बात रहने वाली कशिश, सफलता के लिए मेहनत के साथ ही सोचने का तरीका बदलना भी जरूरी है।
5: बिल्कुल
6: श्रोताओं, मनुष्य का भविष्य उसके भाग्य से नहीं बल्कि उसकी सोच से तय होता है। हम देखते हैं कशिश के जीवन में सफलता प्राप्त करने की इच्छा हर व्यक्ति के मन में होती है।
5: बिल्कुल,
6: कोई शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहा है तो कोई व्यवसाय में, कोई नौकरी में, तो कोई समाज सेवा में अपना नाम कमाना चाहता है। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि केवल कड़ी मेहनत ही सफलता का आधार है।
5: जी बिल्कुल,
6: जबकि वास्तविकता इससे कहीं अधिक व्यापक है। श्रोताओं, मेहनत सफलता का आवश्यक आधार है, लेकिन अगर उसके साथ सही सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलने की क्षमता न हो तो मेहनत का पूरा परिणाम नहीं मिल पाता है।
5: जी हाँ जागृति जी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर हम हमारे युवा साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि हम शुरुआत में पहले मनोरंजन करते हैं और फिर बातचीत की शुरुआत करते हैं, तो क्यों ना यहाँ भी पहले एक प्यारा सा गीत श्रोता साथियों को सुनवा दें हम।
6: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि युवा साथियों, गीत से पहले विषय से जुड़ी बातचीत हमारी आपसे चल रही थी। जैसा कि विषय बताया था कि बात कर रहे हैं सफलता के लिए मेहनत के साथ सोचने का तरीका बदलना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि जागृति जी, सफलता का सपना हमारे युवा साथी देखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, तो कोई कलाकार, तो कोई ऐसे भी युवा साथी हैं जो अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।
1: जी हाँ।
0: लेकिन जब सफलता देर से मिलती है या बार बार असफलता सामने आती है, तो बहुत से युवा साथी केवल अपनी मेहनत को दोष देते हैं और ये मान लेते हैं कि किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। जबकि सच्चाई तो ये है जागृति जी कि केवल मेहनत ही सफलता की गारंटी होती नहीं है। मेहनत के साथ साथ हमारी सोच, हमारा नजरिया और समस्याओं को देखने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।
1: बिल्कुल कशिश, आज का युग ज्ञान, नवाचार और प्रतिस्पर्धा का युग है। केवल अधिक मेहनत करने वाला ही नहीं, बल्कि समझदारी से मेहनत करने वाला व्यक्ति भी आगे बढ़ता है।
0: जी बिल्कुल।
1: इसीलिए कहा जाता है कि हार्ड वर्क, स्मार्ट थिंकिंग, पॉजिटिव माइंडसेट, इन सब को मिलाकर रियल सक्सेस यानी कि सफल लोग केवल अधिक काम नहीं करते, बल्कि सही दिशा में काम करते हैं और हर चुनौती को सीखने का अवसर मानते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। श्रोताओं, विशेषज्ञ भी मानते हैं कि लक्ष्य अगर स्पष्ट हो, चुनौतियों को सीखने का अवसर समझना हो और लगातार स्वयं को बेहतर बनाना सफलता की संभावना बढ़ाता है।
0: जी हाँ, कई बार हम देखते हैं कि इंसान दिन रात मेहनत करता है साथियों।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन वह पुराने तरीके से अगर काम करता रहेगा तो नई सीखने से बचेगा और बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा तो हर समस्या में केवल मुश्किलें ही उसे दिखेंगी।
1: जी हाँ।
0: तो हम कह सकते हैं कि उसका जो मेहनत का पूरा परिणाम है वो उसे नहीं मिलेगा जागृति जी। इसलिए आज के दौर में ये कहा जाता है कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट थिंकिंग भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: युवाओं के लिए विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का समय तेजी से बदल रहा है, ऐसा हम देख रहे हैं।
1: जी हाँ।
0: नई तकनीक है, नए अवसर है, नई चुनौतियां हैं और जो चीजें हैं वो हर दिन हमारे सामने आ रही है। ऐसे में श्रोता साथियों, केवल मेहनती होना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी सोच को भी विकसित करना जरूरी होता है।
1: बिल्कुल कशिश, सफलता केवल धन, पद या प्रसिद्धि का नाम नहीं है श्रोताओं। जैसा कि हर कार्यक्रम के माध्यम से हम ये बातें आपको बताते ही हैं।
0: बिल्कुल,
1: सफलता का वास्तविक अर्थ है कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें, समाज और राष्ट्र के लिए हम उपयोगी बने, निरंतर सीखते हुए स्वयं का विकास करें, साथ ही आत्मसंतोष और आत्मविश्वास प्राप्त करना।
0: बिल्कुल।
1: हर व्यक्ति की सफलता की परिभाषा अलग हो सकती है कशिश, लेकिन उसकी नींव मेहनत और सही सोच पर ही टिकी होती है।
0: जी बिल्कुल,
1: मेहनत सफलता का पहला और सबसे आवश्यक आधार है। बिना परिश्रम के कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को साकार नहीं कर सकता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए श्रोता साथियों, मेहनत हमें अनुशासन सिखाती है, धैर्य सिखाती है, हमारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाती है, साथ ही अनुभव प्रदान करती है और कठिनाइयों का सामना भी करना सिखाती है।
0: जी हाँ।
1: हम देखते हैं कशिश कि किसान खेत में दिन रात मेहनत करता है तभी वो अन्न पैदा करते हैं, खिलाड़ी वर्षों तक अभ्यास करते हैं तभी वो पदक जीतते हैं।
0: बिल्कुल,
1: युवा साथी नियमित अध्ययन करते हैं, नियमित परीक्षाएं देते रहते हैं तभी वो सफल होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मेहनत सफलता की पहली सीढ़ी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा कि मेहनत सफलता की पहली सीढ़ी है। लेकिन हमारे युवा साथियों को हम ये बताना चाहेंगे कि मेहनत भी तभी प्रभावी होती है जब उसके पीछे सही दिशा और सही सोच हो। यदि कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर पूरी ताकत से दौड़ रहा है जागृति जी, तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मेहनत के साथ सही दिशा का होना भी उतना ही जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: हम कह सकते हैं कि सोच भी सफलता की दिशा तय करती है। जैसे कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार होता है।
1: बिल्कुल,
0: और फिर वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है युवा साथियों। ऐसे में यदि कोई युवा हर चुनौती को अवसर

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी कि सफलता के लिए मेहनत के साथ ही सोचने का तरीका बदलना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि हमने सफलता के वास्तविक अर्थ के बारे में जाना था, मेहनत के महत्व के बारे में जाना था, केवल मेहनत ही पर्याप्त क्यों नहीं है इसके बारे में भी हमने हमारे श्रोता साथियों से बात की थी।
1: बिल्कुल,
0: यही बात करते हैं श्रोता साथियों की सोच बदलना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि कशिश, सोच मनुष्य के व्यक्तित्व और निर्णय का आधार होती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही बनता जाता है और उसका व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। साथियों, अगर हम सकारात्मक सोच वाले हैं तो समस्याओं में अवसर खोजेंगे, असफलता से सीखते रहेंगे, निराश नहीं होंगे, नई चुनौतियों को स्वीकार करेंगे और लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। जबकि नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति छोटी कठिनाइयों से भी हार मान लेता है।
1: बिल्कुल,
0: जो व्यक्ति मानता है कि वो सीख सकता है, बदल सकता है और स्वयं को बेहतर बना सकता है, वही लगातार आगे बढ़ता है। ऐसी सोच व्यक्ति को नई चुनौतियों को स्वीकार करने, गलतियों से सीखने और निरंतर सुधार करने के लिए प्रेरित करती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि सकारात्मक सोच का मतलब केवल खुश रहना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है कि हर परिस्थिति में समाधान खोजने की आदत हमारे अंदर हो।
0: बिल्कुल,
1: हम असफलता को भी सीखने का अवसर माने, खुद पर हमारा विश्वास श्रोता साथियों मजबूत हो और बदलाव को अपनाना हम जानते हो, लगातार सीखने की आदत भी हमारी हो। बहुत से लोग जागृति जी ये सोचकर आगे नहीं बढ़ते हैं कि वे नहीं कर पाएंगे, या फिर उनके पास साधन नहीं है, या उनकी उम्र निकल गई है, या फिर कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि हमारे परिवार में किसी ने ऐसा कभी नहीं किया। श्रोता साथियों, ऐसी सोच व्यक्ति की क्षमता को सीमित कर देती है। दूसरी ओर जो लोग ये सोचते हैं कि मैं सीख सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा या करूंगी, गलतियों से सीखेंगे, वही लोग आगे बढ़ते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और यही सोच का अंतर जागृति जी एक सामान्य व्यक्ति को असाधारण व्यक्ति बना देता है।
0: जी हाँ कशिश, आज सफलता के लिए केवल हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क की भी जरूरत होती है। स्मार्ट वर्क का अर्थ होता है श्रोता साथियों की सही योजना बनाना, समय का सही उपयोग करना, हमारी जो प्राथमिकता है उसे तय करना, आधुनिक तकनीक का उपयोग करना, अनुभव से सीखना और कम संसाधनों में अधिक परिणाम प्राप्त करना। जब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क मिल जाते हैं कशिश, तब सफलता और अधिक निश्चित हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: सफल व्यक्ति असफलता को अंत नहीं मांगते हैं। जैसा कि वो अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं, नई रणनीति बनाते हैं, स्वयं में सुधार करते हैं और फिर से प्रयास करते हैं। जैसे कि थॉमस एडिसन ने हजारों असफल प्रयोगों के बाद बल्ब का सफल आविष्कार किया। अगर वे असफलताओं से डर जाते श्रोताओं, तो शायद दुनिया आज इतनी रोशन न होती।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ हमारे साथियों से हम ये भी कहना चाहेंगे कि दोस्तों, यदि आप सचमुच अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो केवल मेहनत की तरफ कदम मत बढ़ाइए, अपनी सोच को भी बदलिए, समस्याओं में अवसर देखिए, आलोचना को सीख में बदलिए, हार को अनुभव में बदलिए और डर को साहस में बदलिए। साथियों, हर दिन खुद को बेहतर संस्करण करने की कोशिश कीजिए। ऐसे में याद रखिए कि मेहनत आपको मंजिल तक पहुंचाती है, लेकिन सही सोच उस मंजिल को हासिल करने का रास्ता आपको दिखाती है।
0: बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि आज के युवा भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर वे मेहनत के साथ अपनी सोच को भी विकसित करेंगे, तो वे स्वयं, समाज और राष्ट्र का भविष्य बदल सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि हमारे युवा साथियों को बड़े सपने देखने चाहिए, नई नई चीजें सीखनी चाहिए, आलोचना से सीखना चाहिए, तकनीक का सकारात्मक उपयोग करना चाहिए, साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात कि समय का सम्मान करना होगा और निरंतर आत्म मूल्यांकन करना होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हमारे युवा साथियों को हम बताएं, तो दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद सकारात्मक सोच और निरंतर सीखने की भावना से भारत के मिसाइल मैन बनने का गौरव प्राप्त किया।
1: बिल्कुल,
0: स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और कर्मयोग का संदेश दिया। महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी जी ने अपनी सोच और सिद्धांतों से पूरे राष्ट्र को नई दिशा दी।
1: जिन
0: सभी महान व्यक्तियों में मेहनत के साथ दूरदर्शी सोच भी थी।
1: बिल्कुल जागृति जी, और हम कह सकते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये बात सत्य भी है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि मेहनत उसकी नींव है, लेकिन सही सोच उसकी दिशा है। साथियों, यदि मेहनत बिना सही सोच के होगी तो परिणाम सीमित रह सकते हैं। वहीं सकारात्मक, दूरदर्शी और सीखने वाली सोच साधारण मेहनत को भी असाधारण उपलब्धियों में बदल सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए हमारे युवा साथियों को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह केवल अधिक मेहनत ही नहीं करेंगे, बल्कि हर दिन अपनी सोच को बेहतर बनाने की कोशिश में लग जाएंगे।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि साथियों, जब मेहनत और सही सोच एक साथ चलते हैं ना, तब सफलता केवल सपना नहीं रहती बल्कि जीवन की सच्चाई बन जाती है।
0: बिल्कुल कशिश, ये स्पष्ट है कि सफलता केवल कठिन परिश्रम का परिणाम नहीं होती है, बल्कि सही सोच, स्पष्ट लक्ष्य, सकारात्मक दृष्टिकोण और निरंतर सीखने की इच्छा का भी परिणाम होती है।
1: बिल्कुल,
0: मेहनत व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, जबकि सही सोच उसे सही दिशा देती है। दिशा के बिना गति व्यर्थ है और गति के बिना दिशा अधूरी है।
1: बिल्कुल,
0: आज हम देखते हैं कि बदलते समय में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलना जानता है, अपनी गलतियों से सीखता है और हर चुनौतियों को अवसर में बदल देता है।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए हमें केवल अधिक मेहनत करने का संकल्प नहीं लेना है, बल्कि सोच को भी व्यापक, सकारात्मक और दूरदर्शी बनाना होगा।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि श्रोताओं, मेहनत सफलता के द्वार तक पहुंचाती है, लेकिन सही सोच उस द्वार को खोलती है। जब परिश्रम और सकारात्मक सोच साथ चलते हैं कशिश, तब सफलता केवल एक संभावना नहीं बल्कि एक निश्चित उपलब्धि बन जाती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी रही, और अब जैसा कि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना एक और गीत श्रोता साथियों को यहाँ पर सुनवा दें हम।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार
2: भाई ने बोनो, आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हा, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल रह, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
3: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
2: होवे आज नाना कदम है ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
4: वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: सेहत नु राज हूँ है बोन,
6: असल आदत ने सही खुराक है बोन।
7: जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो।
8: थोड़ू सू व्यायाम ने तात काड़ी नी जीवन जीवा।
9: फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा।
10: जंक फूड थकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह।
2: होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आराज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा।
11: होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
12: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
1: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
12: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
1: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें। महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।
1: जी हाँ श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है, बिना शिकायत समाधान की संस्कृति कैसे बने। जैसा कि अंजलि, शिकायत करना बहुत आसान है लेकिन समाधान बनना साहस की पहचान है।
0: बिल्कुल,
1: जिस समाज में लोग केवल समस्याएं गिनाने के बजाय उनके समाधान खोजने लगते हैं, वहीं से विकास, विश्वास और सच्चे स्वराज की शुरुआत होती है। अगर हर व्यक्ति ये संकल्प ले ले कि वो केवल क्या गलत है नहीं बल्कि क्या सही है किया जा सकता है इस पर विचार करेगा, तो परिवार, समाज, कार्यस्थल और पूरा देश सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहने वाली है, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनाते हैं हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला यह गीत। तो साथियों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था और बातचीत भी रही थी हमारी, कि आज हम बात करने वाले हैं बिना शिकायत समाधान की संस्कृति हम किस तरह से बन सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि शिकायतें परिस्थितियों को नहीं बदलती, लेकिन समाधान खोजने की सोच इतिहास बदल सकती है।
1: बिल्कुल।
0: जब हर नागरिक समस्या का दर्शक नहीं बल्कि समाधान का सहभागी बनेगा, तभी सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र और सच्चे स्वराज का सपना साकार होता है।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि समस्याएं हर समाज, हर परिवार और हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होती है, लेकिन किसी समाज की वास्तविक पहचान इस बात से होती है कि वह समस्याओं पर कितना समय शिकायत करने में लगा देता है और कितना समय उनके समाधान खोजने में। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि शिकायत करना आसान है, लेकिन समाधान बनाना साहस, जिम्मेदारी और सकारात्मक सोच की पहचान है।
0: बिल्कुल।
1: जिस समाज में लोग केवल कमियां गिनाने के बजाय उन्हें दूर करने के लिए आगे जाते हैं, वही समाज निरंतर प्रगति करता है। आज हम अक्सर सुनते हैं जागृति जी कि सरकार यह नहीं कर रही, समय बदल नहीं रहा, व्यवस्था ठीक नहीं है, लोग सहयोग नहीं करते। लेकिन यदि हम स्वयं से यह प्रश्न पूछें कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो यही प्रश्न परिवर्तन की शुरुआत बन सकता है। बिना शिकायत समाधान की संस्कृति केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन जीने का ऐसा तरीका है श्रोता साथियों, जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों को आगे बढ़ाता है। यही जागृति जी सच्चे स्वराज की भावना भी हमें सिखाती है कि अधिकारों के साथ कर्तव्यों का पालन करें और समस्याओं के समाधान में अपनी भूमिका निभाएं।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि आज का समय बहुत तेजी से बदल रहा है। हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों ने अपनी बात रखना आसान बना दिया है।
1: बिल्कुल।
0: ये अच्छी बात है श्रोता साथियों कि लोग अपनी समस्याएं खुलकर रखते हैं, लेकिन कई बार ये आदत केवल शिकायत तक सीमित रह जाती है। लोग समाधान खोजने या उसके लिए प्रयास करने के बजाय दोषारोपण में समय बिताने लगे हैं।
1: जी हाँ।
0: इसका प्रमुख कारण ये है कि जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति हो गई है लोगों में, नकारात्मक सोच का बढ़ना हो गया है, धैर्य की कमी हो गई है, दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भरता हो गई है और सामूहिक प्रयासों में विश्वास की कमी हो गई है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, अगर यही प्रवृत्ति लगातार बढ़ती रही तो समाज में निराशा और असंतोष, साथ में अविश्वास भी बढ़ता जाएगा।
1: जी हाँ जागृति जी, यही बात करें कि समाधान की संस्कृति आखिरकार क्या है, तो श्रोता साथियों, समाधान की संस्कृति का अर्थ है किसी भी समस्या को देखकर केवल उसकी आलोचना न करें, बल्कि यह सोचें कि उसे कैसे सुधारा जा सकता है। यह संस्कृति व्यक्ति को सक्रिय बनाती है, वह समस्याओं का हिस्सा नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बन जाता है।
0: बिल्कुल।
1: समाधान की संस्कृति हमें सिखाती है श्रोता साथियों कि शिकायत कम, प्रयास अधिक करें, आलोचना कम, सहयोग अधिक करें, दोषारोपण कम, जिम्मेदारी अधिक निभाएं, निराशा कम और आशा अधिक रखें। यानी कि श्रोता साथियों, समाधान की संस्कृति हमें कई ऐसी चीजें सिखाती है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल अंजलि, और यही हमारे श्रोता साथियों को हम बताते हैं कि समाधान की संस्कृति को हम किस तरह से विकसित कर सकते हैं। जैसे कि हर परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है, यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से पालन करता है तो अनेक समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। घर की स्वच्छता, विद्यालय का अनुशासन, कार्यालय की ईमानदारी या समाज की व्यवस्था, हम देखते हैं कि हर जगह हमारी छोटी छोटी जिम्मेदारियां बड़ा परिवर्तन ला सकती है। अगर किसी सड़क में गड्ढा है श्रोताओं, विद्यालय में कोई कमी है या गांव में पानी की समस्या है, तो केवल शिकायत करने के बजाय संबंधित विभाग को सूचना देना होगा, प्रतिनिधियों से संवाद करना होगा, सामूहिक प्रयास करके और अधिक प्रभावी बनाना होगा, क्योंकि हर शिकायत के साथ कम से कम एक समाधान अवश्य हमें सोचना होगा।
1: जी हाँ जागृति जी, यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि सकारात्मक सोच का अर्थ समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं होता, बल्कि विश्वास रखना है कि उसका समाधान संभव है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अवसर खोजते हैं, वही आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: यही अब बात आती है संवाद और सहयोग के बढ़ावे की, तो श्रोता साथियों, समस्याओं का समाधान केवल अकेले नहीं मिलकर होता है। परिवार में संवाद हो, समाज में सहयोग हो, कार्यालय में टीम वर्क हो और गाँव में सामूहिक निर्णय हो, तो बड़े से बड़ा परिवर्तन संभव होता है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है कि किस तरह से हमें बिना शिकायत समाधान की संस्कृति को आगे बढ़ाना है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि शिकायत की संस्कृति क्यों बढ़ रही है और समाधान की संस्कृति क्या है, और वहीं हम जान पा रहे थे कि समाधान की संस्कृति कैसे विकसित की जाए।
1: बिल्कुल,
0: जिसमें हमने जाना था जिम्मेदारी स्वीकार करने की आदत, समस्याओं के साथ समाधान भी रखें और सकारात्मक सोच और संवाद और सहयोग को बढ़ाएं। यही अब बात आती है जागृति जी, युवाओं की सक्रिय भागीदारी की। तो श्रोता साथियों, युवा किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। यदि युवा केवल सोशल मीडिया पर शिकायत करने के बजाय अपने गांव, मोहल्ले और समाज में छोटी छोटी पहल शुरू करें तो बड़ा परिवर्तन संभव हो सकता है। जैसे स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, रक्तदान, डिजिटल शिक्षा, जल संरक्षण, पुस्तकालय निर्माण, नशा मुक्ति अभियान। युवा जब जागृति जी समाधान बनते हैं तभी राष्ट्र आगे बढ़ता है।
1: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि विद्यालय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को केवल परीक्षा की तैयारी नहीं बल्कि जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने की शिक्षा भी मिलती है। प्रोजेक्ट, समूह कार्य, सामाजिक सेवा और नवाचार जैसी गतिविधियां विद्यार्थियों में समाधान की संस्कृति को विकसित करता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि एक अच्छा नेता कभी केवल समस्या नहीं गिनाता बल्कि लोगों को साथ लेकर समाधान भी खोजता है। परिवार का मुखिया, शिक्षक, अधिकारी, जनप्रतिनिधि या समाज सेवी, सभी को अपने व्यवहार से प्रेरणा देनी होगी। कई लोग सोचते हैं अंजलि कि अकेले हम क्या बदल सकते हैं, लेकिन जैसा कि हर कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को कहते हैं कि जितने भी महान परिवर्तन हुए हैं वो सारे महान लोगों की वजह से हुए। हम देखते हैं कि उन्होंने भी छोटे से कदम से ही शुरू किया था, जैसे कि कचरा डस्टबिन में डालना, पानी को बचाना, बिजली को बचाना, समय का सम्मान करना, दूसरों की मदद करना। ये जो छोटे छोटे कदम हैं, यही मिलकर बड़े परिवर्तन का आधार बनते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, हर समस्या हमें कुछ सिखाती है।
1: बिल्कुल,
0: यदि किसी कार्य में असफलता मिले तो शिकायत करने के बजाय ये समझना चाहिए कि अगली बार क्या सुधार किया जा सकता है। यही सोच व्यक्ति को मजबूत बनाती है।
1: जी हाँ,
0: यह समाधान की संस्कृति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है श्रोता साथियों, कि मैं क्या कर सकता हूँ की जो सोच है वो हमें स्वयं से पूछनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: यही चीज हमें योगदान देने की जो चीजें हैं उसके लिए प्रेरित करती है। यही प्रश्न समाज को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है, क्योंकि यदि समाज शिकायत छोड़कर समाधान की दिशा में आगे बढ़े तो सकारात्मक वातावरण बनेगा, लोगों में विश्वास बढ़ेगा, समय और ऊर्जा का सही उपयोग होगा और समाज में सहयोग की भावना विकसित होगी।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ जागृति जी, विकास की गति तेज होगी, युवा प्रेरित होंगे, लोकतंत्र मजबूत होगा और सच्चे स्वराज की जो भावना है वो भी साकार हो पाएगी।
1: जी हाँ अंजलि, तो आज का युवा केवल नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि समाज बनाने वाला भी है। हम देखते हैं कि देश को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो हर समस्या में अवसर देखे, हर चुनौती में सीख देखे और हर कठिनाई में समाधान खोजे। मोबाइल की स्क्रीन पर शिकायत लिखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने आसपास एक छोटा सकारात्मक परिवर्तन लाएं।
0: बिल्कुल,
1: यही सच्ची देशभक्ति श्रोता और यही सामाजिक जिम्मेदारी है और यही उज्जवल भविष्य की नींव है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं अंजलि कि समस्या जीवन का अंत नहीं है बल्कि नई शुरुआत का अवसर है। शिकायतें केवल शोर पैदा करती है जबकि समाधान भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अपने घर, विद्यालय, कार्यस्थल और समाज में संकल्प लें कि हम केवल कमियां नहीं गिनाएंगे बल्कि उन्हें दूर करने में अपनी भूमिका भी निभाएंगे, तो परिवर्तन निश्चित है।
0: जी हाँ जागृति जी, हमें खुद से ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं शिकायत करने वाला नहीं समाधान खोजने वाला नागरिक बनूंगा, मैं दोष नहीं दायित्व चुनूंगा, मैं आलोचना नहीं सहयोग करूंगा। क्योंकि सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम कहना छोड़ देते हैं कि कोई कुछ क्यों नहीं करता और यह कहना शुरू कर देते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ।
1: बिल्कुल,
0: यही बिना शिकायत समाधान की संस्कृति है, यही सशक्त समाज की पहचान है और यही सच्चे स्वराज की दिशा में हमारा सबसे बड़ा कदम है।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए श्रोता साथियों कि शिकायत नहीं समाधान को हमें अपनाना है और इस तरीके से मिलकर हम सभी नया भारत बना सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, तो हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम शिकायतों की भीड़ का हिस्सा नहीं बने बल्कि समाधानों की पहचान बनेंगे। हम दोषारोपण नहीं करेंगे, हम दायित्व को निभाएंगे और हम आलोचना नहीं सहयोग की भावना को अपनाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जब हर नागरिक स्वयं परिवर्तन का माध्यम बनता है तभी सच्चे अर्थों में स्वराज, समृद्धि और विकास का सूर्योदय होता है। इसलिए श्रोता साथियों, समाधान की संस्कृति को अपनाइए और अपने जीवन, समाज तथा राष्ट्र को नई दिशा दीजिए, नई ऊंचाइयां प्रदान करिए और यही सच्चे स्वराज की पहचान है और यही उज्जवल भारत का भविष्य है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखा है, तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकर रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है पोषण क्या है और शरीर में पोषण की पूर्ति कैसे करें।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, बच्चे अच्छी तरह बढ़े, बुजुर्ग सक्रिय रहें, महिलाएं हर दिन ऊर्जा से भरपूर महसूस करें।
0: जी हाँ।
1: लेकिन यह तभी संभव है श्रोता साथियों जब हमारे शरीर को सही पोषण मिले। अक्सर लोग सोचते हैं कि महंगा भोजन ही पौष्टिक होता है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारे गांव, खेत और रसोई में मौजूद कई साधारण खाद्य पदार्थ भी शरीर को भरपूर पोषण दे सकते हैं। तो आज हम कार्यक्रम में यही जानेंगे पोषण क्या है, इसकी कमी से क्या समस्या होती है और हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भोजन में पोषण को कैसे शामिल कर सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विषय से तो रूबरू कराई चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं पोषण क्या है और ये हमारे शरीर में पोषण की पूर्ति कैसे करता है। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि स्वस्थ जीवन का आधार केवल पेट भरना नहीं बल्कि शरीर को सही और पर्याप्त भोजन देना है।
1: बिल्कुल,
0: आज के समय में ज्यादातर लोग, अंजलि जी, हम देखते हैं कि भोजन तो भरपूर करते हैं लेकिन फिर भी उनके शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी बनी रहती है।
1: जी हाँ,
0: इसका कारण यह है श्रोता साथियों कि हम स्वाद और सुविधा को अधिक महत्व देने लगे हैं जबकि पौष्टिक भोजन को अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: परिणाम स्वरूप अंजलि जी हम देखते हैं कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर आयु वर्ग में कुपोषण, एनीमिया, कमजोरी, मोटापा, मधुमेह और हृदय रोगों जैसी समस्याएं वो बढ़ती जा रही हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारा शरीर भोजन से आवश्यक तत्व प्राप्त करता है।
0: जी हाँ,
1: ये तत्व शरीर को ऊर्जा देने, वृद्धि करने, रोगों से लड़ने, मांसपेशियों को मजबूत बनाने और शरीर के सभी अंगों को सही ढंग से कार्य करने में सहायता करते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, जिस प्रकार किसी वाहन को सही ईंधन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार शरीर को भी संतुलित और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। यदि भोजन संतुलित नहीं होगा तो शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है।
0: जी हाँ,
1: आज हम देखते हैं मनीषा कि संतुलित आहार का हमारे जीवन में महत्व और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि आजकल लोग जो हैं वो बाहर के जो खान पान की चीजें हैं उस पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। ऐसे में संतुलित आहार वह भोजन है श्रोता साथियों जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद होते हैं।
0: जी हाँ,
1: इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, फाइबर, पर्याप्त पानी होता है। इन सभी की अपनी अपनी भूमिका होती है मनीषा।
0: जी हाँ,
1: और किसी एक की कमी भी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि पोषण का महत्व केवल शरीर को ताकत देने तक सीमित नहीं है। यह जीवन के प्रत्येक चरण में श्रोता साथियों महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: बिल्कुल,
0: जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक शरीर को लगातार पोषण की आवश्यकता होती है। बचपन में श्रोता साथियों हम देखते हैं कि पोषण है वो शरीर की लंबाई, वजन, हड्डियां और मस्तिष्क के विकास में सहायता करता है।
1: बिल्कुल,
0: यदि इस समय पोषण न मिले तो बच्चों का विकास से वो अंजलि जी प्रभावित हो सकता है। यही अगर किशोर अवस्था की बात करें तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि किशोर अवस्था में शरीर तेजी से बढ़ता है।
1: बिल्कुल,
0: इस समय पर्याप्त प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन की आवश्यकता होती है। सही पोषण से हमारा शरीर ही वो मजबूत रहता है और मानसिक क्षमता है वो विकसित होती है।
1: बिल्कुल,
0: युवा अवस्था में अंजलि जी हम देखते हैं कि पोषण है वो हमारे कार्य करने की शक्ति होती है, मानसिक एकाग्रता और रोगों से बचाव करने में सहायता करती है। श्रोता साथियों, जो व्यक्ति संतुलित भोजन करता है वह अधिक सक्रिय और ऊर्जावान रहता है। वृद्धावस्था में अंजलि जी हम देखते हैं कि शरीर की कार्य क्षमता वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसे समय में पौष्टिक भोजन और हल्का भोजन शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही श्रोता साथियों हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को कमजोर होने से बचाता है।
1: बिल्कुल मनीषा, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि शरीर के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो शरीर को ऊर्जा देता है। इसके लिए हम गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, आलू और शकरकंद खा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: प्रोटीन की बात करें तो यह शरीर की वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत करता है। इसके लिए हम दालें, चना, मूंग, राजमा, सोयाबीन, दूध, दही, पनीर, अंडा खा सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: वसा की बात करें तो यह शरीर को ऊर्जा देता है और शरीर को गर्म रखने में भी मदद करता है।
0: जी हाँ,
1: इसके लिए हम मूंगफली, तिल, अलसी, घी, सरसों का तेल और नारियल खा सकते हैं। और विटामिन की बात करें तो यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इसके लिए हम हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, टमाटर, संतरा, आंवला, पपीता, केला और आम खा सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि खनिज लवण भी शरीर के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये हड्डियों में खून और शरीर के अन्य कार्यों के लिए आवश्यक है। इसके लिए हम दूध, तिल, रागी, हरी सब्जियां, चना और गुड़ खा सकते हैं। फाइबर भी पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। इसके लिए हमें नियमित तौर पर सलाद, फल, साबुत अनाज और दालें खानी चाहिए। श्रोता साथियों, पानी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है।
0: जी हाँ,
1: प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी पीना भी हमारे लिए जरूरी होता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से पोषण क्या है और शरीर में पोषण की पूर्ति कैसे होती है इस विषय को लेकर हम बातें कर ही रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें हम आगे भी हमारे श्रोता साथियों से ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना मनीषा कि पोषण क्या है, संतुलित आहार क्या होता है और शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं और उसमें हम कौन कौन से स्रोत शामिल कर सकते हैं। यहीं अब बात आती है कि पोषण की कमी क्यों होती है।
1: श्रोता
0: साथियों, इसके कई कारण है। जैसे कि केवल हम पेट भरने वाला भोजन खाते हैं तो इससे पोषण की पूर्ति नहीं हो पाती। हरी सब्जियां, फल कम खाना, जंक फूड का अधिक सेवन करना, भोजन समय पर न करना, बार बार बीमार पड़ना, गरीबी और भोजन की कमी, भोजन पकाने की जो गलत विधियां होती हैं उसके कारण भी हम देखते हैं कि पोषण की पूर्ति नहीं होती है और स्वच्छता के अभाव। यही अब बात आती है कि पोषण की कमी के क्या लक्षण होते हैं।
1: हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, यदि शरीर में पोषण की कमी है तो हम जल्दी थक जाते हैं। कमजोरी, चक्कर आना, खून की कमी, बार बार बीमार पड़ना, बच्चों का विकास रुकना, बाल झड़ना, त्वचा रूखी होना, आंखों की कमजोरी और हड्डियों में दर्द, ये कुछ ऐसे प्रभाव हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमें दिखाई दें तो तुरंत हमें हमारी दिनचर्या में बदलाव करने की जरूरत है और हमें हमारे खाने में पोषण की पूर्ति करके खुद और अपने बच्चों और अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि पोषण की कमी का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि बच्चों के जीवन के शुरुआती वर्ष उनके संपूर्ण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यदि इस समय उन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है।
0: जी हाँ।
1: ऐसे में श्रोता साथियों, बच्चों की लंबाई और वजन सामान्य बच्चों से कम हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान लगने में कठिनाइयां होती हैं अंजलि जी, साथ ही याद रखने की क्षमता है वो कम हो जाती है और वे जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, यदि बचपन से ही पोषण की कमी लंबे समय तक बनी रही तो उसका प्रभाव बड़े होने के बाद दिखाई देता है। इसीलिए बच्चों को बचपन से ही संतुलित और पौष्टिक भोजन देना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ मनीषा, आपने सही कहा। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि शरीर में पोषण की पूर्ति हम कैसे करें, तो इसके लिए हमें थाली में रंगों का ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि जितनी अधिक प्राकृतिक रंग भोजन में होंगे उतने अधिक पोषक तत्व हमें मिलेंगे। बाजरा, ज्वार, रागी और मक्का पोषण से भरपूर होते हैं। कम से कम एक कटोरी दाल हमें अवश्य खानी चाहिए। उसी के साथ सप्ताह में कई बार पालक, मेथी, सरसों, चौलाई जैसी सब्जियों को हमें शामिल करना है। महंगे फलों की जगह स्थानीय और मौसमी फलों का हमें अत्यधिक सेवन करना है। इसी के साथ गुड़, चना हमें खाना है क्योंकि यह सस्ता और पौष्टिक और ऊर्जा देने वाला प्राकृतिक नाश्ता है। इसी के साथ मनीषा, हम अंकुरित अनाज को अपनी जीवन शैली में शामिल करें। जैसे कि अंकुरित मूंग और चना विटामिन और प्रोटीन का अच्छा स्रोत होते हैं। दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके स्वच्छ पानी पीते रहें। नाश्ता छोड़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए भोजन को समय पे करें। कोल्ड ड्रिंक, पैकेट वाले स्नैक और अत्यधिक तली भुनी जो चीजें होती है उससे दूर रहने की जरूरत है।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, गर्भवती महिलाओं को विशेष पोषण की आवश्यकता होती है क्योंकि माँ के साथ साथ शिशु पर दोनों पर इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। श्रोता साथियों, इसके लिए हमें पर्याप्त मात्रा में हरी सब्जियां, दूध, दाल, फल, आयरन और कैल्शियम युक्त भोजन के लिए महिलाओं को प्रेरित करने की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि पोषण स्वस्थ और सुखी जीवन की सबसे मजबूत नींव है। यदि शरीर को सही समय पर सही मात्रा में सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहे तो व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा श्रोता साथियों, बल्कि मानसिक रूप से भी सक्रिय, ऊर्जावान और आत्मविश्वासी बनता है। अच्छा पोषण बच्चों के संपूर्ण विकास, युवाओं की कार्य क्षमता, महिलाओं के स्वास्थ्य, गर्भस्थ शिशुओं को सुरक्षित विकास, साथ ही श्रोता साथियों बुजुर्ग के स्वस्थ जीवन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए पोषण को केवल भोजन तक सीमित न मानकर स्वस्थ जीवन का अभिन्न अंग हमें समझना चाहिए।
0: बिल्कुल मनीषा, यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों को कि एक स्वस्थ समाज के लिए केवल व्यक्ति नहीं पूरा समुदाय जिम्मेदार होता है।
1: जी हाँ।
0: आंगनबाड़ी, स्कूल, स्वयं सहायता समूह, किसान समूह, परिवार मिलकर पोषण वाटिका विकसित कर सकते हैं। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के भोजन पर विशेष ध्यान दे सकते हैं और स्थानीय अनाज और पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा दे सकते हैं।
1: जी
0: जब
1: हाँ।
0: गाँव में पोषण की समझ बढ़ती है तब बीमारियां घटती है और आने वाली पीढ़ी अधिक स्वस्थ बनती है। श्रोता साथियों, पोषण केवल भोजन का नाम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की आधारशिला है। शरीर जो है वो जीवन पर हमारा साथ देता है, इसलिए उसकी जरूरतों को समझना हमारी जिम्मेदारी है। स्वस्थ रहने के लिए महंगे खाद्य पदार्थों की नहीं श्रोता साथियों, बल्कि सही जानकारी, संतुलित भोजन और नियमित आदतों की आवश्यकता होती है। और ये बात हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा आपको बताते रहते हैं।
1: जी हाँ,
0: आज के समय में श्रोता साथियों एक छोटा सा संकल्प हमें लेने की जरूरत है, जैसे कि हर भोजन में विविधता लाएं, स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों को अपनाएं, बच्चों महिलाओं और बुजुर्गों के पोषण का विशेष ध्यान रखें और अपने परिवार और समुदाय में पोषण के प्रति जागरूकता फैलाएं। जब हर घर की थाली संतुलित होगी तभी हर परिवार स्वस्थ, हर बच्चा सशक्त और हर गांव समृद्ध बन पाएगा। यही स्वस्थ समाज और उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी मजबूत नींव है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है अब कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दे।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और हमारी स्वास्थ्यप्रद बातें अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रहीं, पोषण क्या है और हमारे शरीर में पोषण की पूर्ति हम कैसे करें, तो आप सभी को जरूर पसंद आई होंगी। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
0: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। भारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागुट रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत का विषय है जल संरक्षण को लेकर।
0: बिल्कुल
1: मनीषा, श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि एक पुरानी कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यही बात पानी पर भी लागू होती है। पानी की हर बूंद अनमोल है। जिस तरह बिना हवा के जीवन संभव नहीं, उसी तरह बिना पानी के भी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है।
0: बिल्कुल,
1: आज हम नल खोलते हैं, पानी आ जाता है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि अगर एक दिन यह पानी आना बंद हो जाए तो क्या होगा? खेत सूख जाएंगे श्रोता साथियों, पशु प्यासे रह जाएंगे, फसलें नष्ट हो जाएंगी और जीवन कठिन हो जाएगा।
0: इसलिए
1: आज हम समझेंगे कि जल संरक्षण क्यों जरूरी है, इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है और हम अपने घर, खेत और गांव में मिलकर पानी कैसे बचा सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दी।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय से तो रूबरू कराई चुके हैं कि आज हम बात कर रहे हैं जल संरक्षण को लेकर। अंजलि जी, हम देखते हैं कि जल प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना जल के बिना नहीं की जा सकती। श्रोता साथियों, मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और सभी जीव जंतु जल पर ही निर्भर है। जल केवल हमारी प्यास बुझाने का साधन नहीं है अंजलि जी, बल्कि यह खेती, उद्योग, बिजली उत्पादन, स्वच्छता और पर्यावरण को संतुलित रखने का भी आधार है। यही कारण है श्रोता साथियों कि जल को जीवन भी कहा जाता है। आज विज्ञान और तकनीकी के युग में श्रोता साथियों हम देखते हैं कि दुनिया के करोड़ों लोग स्वच्छ पेयजल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में श्रोता साथियों लोग कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाते हैं। बढ़ती आबादी, अंधाधुंध भूजल दोहन, जल स्रोतों का प्रदूषण और वर्षा जल का सही उपयोग न होने के कारण अंजलि जी हम देखते हैं कि जल संकट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि आज हम नल खोलते हैं, पानी आ जाता है
0: जी हाँ।
1: लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि अगर एक दिन ये पानी बंद हो जाए तो क्या होगा? खेत सूख जाएंगे, पशु प्यासे रह जाएंगे, फसल नष्ट हो जाएगी और जीवन कठिन हो जाएगा तो क्या होगा? कह सकते हैं मनीषा श्रोता साथियों से कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग पानी से ढका है
0: जी। बिल्कुल,
1: उसमें से अधिकांश पानी खारा है। पीने योग्य पानी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है
0: जी हाँ।
1: जल केवल हमारी प्यास बुझाने के लिए नहीं, उसका उपयोग खेती, पशुपालन, उद्योग, बिजली उत्पादन, सफाई, भोजन बनाने, पर्यावरण को संतुलित रखने में होता है
0: जी हाँ।
1: यदि पानी नहीं होगा तो खेती बंद हो जाएगी, भोजन का संकट जो है वो पैदा हो जाएगा, पशुओं का जीवन खतरे में पड़ जाएगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, बीमारियां बढ़ेगी, आर्थिक संकट गहरा जाएगा। इसलिए जल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। आज कई कारणों से पानी की कमी लगातार बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि भूजल का जो पानी है वो उसका दोहन जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। हर जगह बोरवेल, ट्यूबवेल लगाई जा चुकी है, लेकिन उतना ही पानी श्रोता साथियों जमीन में वापस पहुंचाना हमारे लिए जरूरी है
0: जी हाँ।
1: अगर हम उसका उतना ही पानी जमीन में नहीं पहुंचाते हैं तो हम देखते हैं कि भूजल की जो चीजें हैं वो धीरे धीरे निरंतर कम होती जा रही है
0: जी हाँ।
1: वर्षा जल संरक्षण जरूरी है, यानी कि बरसात का अधिकांश पानी बहकर नदियों और समुद्र में चला जाता है। पेड़ कम होने से वर्षा का संतुलन बिगड़ रहा है, कचरा और गंदा पानी जल स्रोतों को दूषित कर रहे हैं। इसी के साथ श्रोता साथियों जनसंख्या बढ़ने के साथ पानी की मांग भी बढ़ रही है
0: जी हाँ।
1: अनियमित वर्षा, सूखा, बहुत ज्यादा गर्मी भी जल संकट का प्रमुख कारण बन चुकी है
0: जी। बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि यदि समय रहते हमने जल का संरक्षण श्रोता साथियों करने में सही दिशा में गंभीर कदम हमने नहीं उठाए तो हम देखते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को इसका सामना करना पड़ सकता है
1: जी जी।
0: इसलिए जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं माननी है हमें, बल्कि प्रत्येक नागरिक का यह नैतिक कर्तव्य है
1: जी हाँ।
0: साथियों, हम देखते हैं कि जल ही जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। मनुष्य के शरीर का लगभग श्रोता साथियों 2-3/4 भाग जल से बना होता है।
1: बिल्कुल,
0: बिना भोजन के मनुष्य कई दिनों तक जीवित रह सकता है साथियों, लेकिन अंजलि जी बिना पानी के कुछ दिन भी जीवित रहना संभव नहीं है
1: जी हाँ।
0: हमारे दैनिक जीवन में श्रोता साथियों जल की उपयोग हम अनेक कार्यों में करते हैं, जैसे कि पीने के लिए, भोजन करने के लिए, स्नान और कपड़े धोने के लिए, खेती और सिंचाई के लिए। साथ ही श्रोता साथियों हमारे घर में पशु हैं, उनकी देखभाल में भी हम पानी का उपयोग करते हैं। तो कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से तो हमें जल का संरक्षण है वो श्रोता साथियों करना है।
1: बिल्कुल मनीषा, यही अब बात आती है ग्रामीण जीवन और जल संरक्षण की
0: जी।
1: श्रोता साथियों, गाँव की अर्थव्यवस्था खेती और पशुपालन पर आधारित होती है। यदि खेत में पानी नहीं होगा तो किसान की मेहनत बेकार जाएगी, पशुओं के लिए चारा नहीं मिलेगा, दूध उत्पादन घटेगा, परिवार की आय कम हो जाएगी। इसलिए गांवों में जल संरक्षण सबसे अधिक आवश्यक है।
0: बिल्कुल,
1: परंपरागत जल संरक्षण जो है वो हमारी विरासत है। श्रोता साथियों, हमारे पूर्वज पानी का महत्व अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने अनेक पारंपरिक जल स्रोत बनाए, जैसे की तालाब, बावड़ी, कुएं, जोहर, नाड़ी और छोटे जल संरचनाएं। इससे वर्षों तक पानी की उपलब्धता बनी रहती थी।
0: बिल्कुल,
1: आज हमें इन पारंपरिक प्रणालियों को फिर से जीवित करने की आवश्यकता है। कह सकते हैं कि हम सभी छोटे छोटे प्रयास के माध्यम से भी जल संरक्षण की चीजों को अपना सकते हैं
0: जी हाँ।
1: हमें करना सिर्फ इतना है कि घर में नल खुला नहीं छोड़ना है, पानी का अनावश्यक उपयोग नहीं करना है, कपड़े और बर्तन अनावश्यक आवश्यकता अनुसार ही उसमें पानी का उपयोग हमें करना है, वर्षा जल संरक्षण करें और खेत में ड्रिप सिंचाई अपनाएं, स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग कर सकते हैं, खेत की मेड़बंदी करें, वर्षा जल को खेत में रोकें।
0: जी हाँ।
1: इसके साथ गांवों में तालाबों की सफाई निरंतर करें, जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और जल संरक्षण अभियान चलाएं।
0: बिल्कुल
1: साथियों, यकीन मानिए कि ये कुछ छोटे मोटे प्रयास ही जल संरक्षण के उपाय के लिए बहुत ही सरल है और इससे हम बहुत अच्छी तरीके से पानी का संरक्षण कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अगर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाएगा फिर दूसरा व्यक्ति उससे जागरूक होकर ये जिम्मेदारी निभाएगा तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि परिवर्तन की दिशा में हम अपने कदम जो है वो अच्छे से बढ़ा पाएंगे।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, हम देखते हैं कि जल के बिना कृषि है वो भी असंभव है। यदि खेतों में समय पर पानी न दिया जाए श्रोता साथियों, तो हम देखते हैं कि हमारी फसलें हैं वो नष्ट हो जाती हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसी प्रकार उद्योगों में भी श्रोता साथियों पानी की बहुत आवश्यकता होती है। मशीनों को ठंडा रखने के लिए, उत्पादन की सफाई के लिए पानी की जरूरत होती है। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि अभी हम देख रहे हैं अंजलि जी की बारिश का मौसम चल रहा है, तो इस समय श्रोता साथियों आप ये सबसे उचित समय है कि हम बारिश के पानी का संरक्षण हम कर सकते हैं। बारिश का हमारी छतों का पानी होता है या बाहर का जो पानी होता है, हमारे आसपास कुएं हैं उनमें हम जाने के लिए कुछ कर सकते हैं, या फिर हमारी घर की टंकियां हैं उनमें हम जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार श्रोता साथियों आप जो पानी है बरसात का पानी है उसका संरक्षण आप कर सकते हैं।
1: जी हाँ मनीषा, तो जैसा कि कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हम बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जान पाए, यही बात करते हैं कि जल संरक्षण में बच्चों की क्या भूमिका है।
1: बिल्कुल,
0: तो दोस्तों, बच्चे भी जल संरक्षण के सबसे बड़े दूत बन सकते हैं। वे नल बंद करना सीखे, पानी व्यर्थ बहते देखे तो बड़ों को बताएं, स्कूल में जल संरक्षण पर अभियान चलाएं, अपने मित्रों को भी जागरूक करें। आज का जागरूक बच्चा ही मनीषा कल जिम्मेदार नागरिक बनेगा।
1: बिल्कुल,
0: ग्रामीण परिवारों में पानी के उपयोग का सबसे अधिक अनुभव महिलाओं के पास होता है। वे पानी का सही उपयोग करें, बच्चों को पानी बचाने की आदत सिखाएं, वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा दें, गांव की जल समितियों में भाग ले सकती हैं।
1: जी हाँ,
0: जल संरक्षण केवल सरकार का काम नहीं है श्रोता साथियों। सरकार योजनाएं बना सकती हैं, लेकिन उन्हें सफल तभी बनाया जा सकता है जब समाज भी आगे जाए। ग्राम पंचायत, किसान समूह, स्वयं सहायता समूह, स्कूल युवा मंडल और हर नागरिक यदि मिलकर काम करे तो जल संकट काफी हद तक कम किया जा सकता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, एक प्रेरक प्रसंग आपको सुनाना चाहेंगे कि एक गांव में हर वर्ष गर्मियों में पानी की भारी कमी हो जाती थी। लोग मनीषा दूर दूर से पानी लाते थे।
1: जी हाँ।
0: एक दिन गांव के बुजुर्ग ने बैठकर निर्णय लिया और सभी लोगों को बुलाया। उसमें ये निर्णय हुआ कि इस बार केवल शिकायत नहीं करेंगे बल्कि समाधान खोजेंगे। गांव के लोगों ने मिलकर पुराने तालाब की सफाई की, खेतों में मेड़बंदी की, वर्षा जल रोकने के लिए छोटे छोटे गड्ढे बनाए और सैकड़ों पौधे लगाए। पहली ही बारिश में तालाब भर गया, धीरे धीरे कुओं का जल स्तर बढ़ने लगा। अगले वर्ष गांव में पानी की समस्या काफी कम हो गई। इस घटना ने पूरे गाँव को यह सिखाया कि जब समाज मिलकर काम करता है तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान संभव होता है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए साथियों, जल बचाना किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी का कर्तव्य है। जब हम एक बाल्टी पानी बचाते हैं, जब हम केवल पानी नहीं बचाते बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित रखते हैं, तो याद रखिए कि पानी की हर बूंद प्रकृति का अनमोल उपहार है।
1: बिल्कुल,
0: इसे बचाना हमारी संस्कृति है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा भविष्य है। यदि आज हम जल संरक्षण को अपनी आदत बना लें तो आने वाले वर्षों में हमारे खेत हरे भरे रहेंगे, नदियां बहती रहेंगी, पशु पक्षी सुरक्षित रहेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद देंगी। तो श्रोता साथियों, हमें यह संकल्प लेना है कि न हम पानी को व्यर्थ बहाएंगे, न ही किसी को बहाने देंगे।
1: जी हाँ।
0: वर्षा की हर बूंद सहेजेंगे और जल संरक्षण को जन जन का अभियान बनाएंगे।
1: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि जल संकट क्या है उसकी, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि जब किसी क्षेत्र में लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें पानी या स्वच्छ पानी है वो उपलब्ध नहीं होता है तो उसे ही हम जल संकट कहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: आज हम देखते हैं कि दुनिया के अनेक देशों के साथ साथ भारत के अनेक राज्यों में भी जल संकट की गंभीर समस्या बन चुका है।
0: जी हाँ।
1: गर्मियों के मौसम में कई गांवों और शहरों में पानी की भारी कमी देखने को मिलती है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि सरकार द्वारा भी कई सारे प्रयास किए जाते हैं, टैंकरों द्वारा पानी पहुंचाया जाता है ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो।
0: जी हाँ।
1: पर श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि अक्सर गाँव के लोग हैं वो पानी को संभाल के नहीं रखते, बर्तन साफ करते हैं, वो पानी हम पेड़ पौधों में डाल दे तो वो उपयोग में आ सकता है। पर अंजलि जी, हम देखते हैं कि लोग ही वो पानी को व्यर्थ बहा देते हैं।
0: जी जी।
1: इतने पानी की गंभीर समस्या को देखते हुए भी लोग ध्यान नहीं रखते कि हम पानी का बचाव कैसे करें। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से कहने का मतलब यही है कि हमें पानी का संरक्षण करना है और जितना हो सके उतना हमें पानी की एक एक बूंद को बचाना है।
0: बिल्कुल मनीषा, किसी भी सभ्यता की पहचान उसके महलों, सड़कों या ऊंची इमारतों से नहीं होती है बल्कि श्रोता साथियों, इस बात से होती है कि वो अपनी प्राकृतिक संसाधनों की कितनी जिम्मेदारी से रक्षा करता है।
1: जी हाँ।
0: जल ऐसा ही अमूल्य संसाधन है जो हमें प्रकृति से बिना किसी मूल्य के मिला है। लेकिन यदि हमने इसकी कदर नहीं की श्रोता साथियों, तो भविष्य में इसके सबसे बड़ी कीमत हमारे आने वाली पीढ़ियों के बच्चों को चुकानी पड़ेगी। इसलिए जल संरक्षण केवल पर्यावरण का विषय नहीं है बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है।
1: जी हाँ।
0: हम अक्सर ये सोचते हैं मनीषा कि हमारे अकेले के पानी बचाने से क्या ही फर्क पड़ेगा।
1: जी हाँ।
0: लेकिन श्रोता साथियों, परिवर्तन हमेशा एक छोटे से कदम से शुरू होता है। यदि हर घर प्रतिदिन कुछ पानी की चीजों को बचाएगा तो हर किसान भी इन सारी चीजों को अपनाएगा। इसी के साथ बच्चे जो हैं वो भी इन सारी चीजों के महत्व को सीखेंगे। हर ग्राम पंचायत अपने जल स्रोतों की देखभाल करे तो मिलकर लाखों लीटर पानी बचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और यही छोटे छोटे प्रयास श्रोता साथियों, यकीन मानिए, बड़े जन आंदोलन का रूप लेते हैं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज जल संकट के कई कारण हैं। इसमें श्रोता साथियों सबसे प्रमुख कारण यह है कि हम पानी की आवश्यकताओं से अधिक हम पानी का उपयोग करते हैं। कई बार हम बिना सोचे समझे पानी बहा देते हैं। जैसा कि अंजलि जी आपने बताया था कि हमारे घर के बच्चे या लोग हैं वो नल को खुला छोड़ देते हैं। आवश्यकता से अधिक श्रोता साथियों हम कपड़े धोने या घरों के बर्तन धोने के लिए पानी को बर्बाद करते हैं, रिश्ते हुए नलों को ठीक नहीं करवाते हैं। ये छोटी छोटी लापरवाहियां हैं जो पानी को बहुत ज्यादा बर्बाद करती हैं।
0: जी जी।
1: दूसरा अंजलि जी बात करें कि दूसरे कारण की, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि भूजल का अत्यधिक दोहन भी हो रहा है। शहरों और गांव में पीने, खेती करने और जरूरतों के लिए मात्रा में पानी बहुत कम होता है। वो पानी भूजल जमीन से निकाला जाता है। यदि श्रोता साथियों जितना पानी जमीन से निकाला जा रहा है उतना ही हम वापस में जमीन में नहीं पहुंचाते हैं, तो अंजलि जी हम देखते हैं कि हमारे भूजल का स्तर है वो हमेशा लगातार वो नीचे चला जाता है।
0: जी जी।
1: श्रोता साथियों तीसरे कारण की बात करें तो हम देखते हैं कि जल प्रदूषण नदियों में, तालाबों में या अन्य जो जल स्रोत हैं वहाँ कचरा और गंदगी और प्लास्टिक जैसी रासायनिक पदार्थ ही वो हैं अंजलि जी बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमारे पीने योग्य पानी ही उसकी गुणवत्ता कम हो रही है और हमारा पानी है वो दूषित हो रहा है। अगर हमारे समुदाय के लोग या हमारे वागड़ क्षेत्र के लोग इस पानी का उपयोग करते तो हम देखते हैं कि उनके स्वास्थ्य पर और उनके घर के पशु हैं उन पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हमें जल प्रदूषण हो रहा है उस पर भी ध्यान देना है। जल संरक्षण के साथ साथ ही श्रोता साथियों हमारे आसपास की जो तालाब हैं या कुएं हैं उनकी सफाई करवा के हमें जल को सुरक्षित और साफ रखना है।
0: बिल्कुल मनीषा आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम कार्यक्रम में जान पा रहे हैं कि जल संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए, क्या महत्व है और किस तरीके से आज बचाया गया पानी हमारे द्वारा आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा।
1: जी हाँ।
0: ये बातें निरंतर आगे यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि किस तरीके से हर व्यक्ति अगर प्रतिदिन कुछ लीटर पानी बचाता है तो यही छोटे प्रयास एक बड़ा जन आंदोलन बन सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, यह भी याद रखना होगा कि जल संरक्षण केवल संकट के समय की मजबूरी नहीं बल्कि हर मौसम की आदत होनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: जब बारिश होती है तभी हमें उसके पानी को सहेजने की योजना बनानी चाहिए। जब नदियां और तालाब भरे हो तभी उसके संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि समझदारी इसी में ही है कि संसाधनों को खत्म होने का इंतजार न किया जाए बल्कि समय रहते उनकी रक्षा की जाए।
1: बिल्कुल।
0: हम अपने बच्चों को ऐसी विरासत दें जहां उन्हें पानी के लिए संघर्ष न करना पड़े बल्कि वे नदियों की कलकल ध्वनि, भरे हुए तालाबों, हरे भरे खेतों और जीवन से भरपूर प्रकृति को अपनी आंखों से देख सके।
1: जी हाँ।
0: यह तभी संभव होगा श्रोता साथियों जब हम आज से ही जल का सम्मान करना सीखें और उसे केवल उपयोग की वस्तु नहीं बल्कि जीवन का आधार माने। इसलिए श्रोता साथियों, हर बूंद का सम्मान करें, वर्षा जल को संजोएं, जल स्रोतों को स्वच्छ रखेंगे, पेड़ लगाएंगे और अपने गांव और अपने समाज तथा अपने देश को जल संपन्न बनाने में अपना योगदान देंगे। क्योंकि जब हम पानी बचाते हैं तब केवल वर्तमान नहीं बल्कि आने वाले कल की मुस्कान भी बचाते हैं।
1: जी हाँ।
0: जल सुरक्षित रहेगा तभी जीवन सुरक्षित रहेगा और तभी विकास की धारा निरंतर बहती रहेगी।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि पेड़ों की कटाई है वो भी जल संकट का एक महत्वपूर्ण कारण है।
0: बिल्कुल।
1: पेड़ है श्रोता साथियों, वर्षा के पानी को जमीन में पहुंचाते हैं और हमारी मिट्टी की नमी है उसको बनाए रखने में मदद करते हैं। श्रोता साथियों, जब जंगल कम होते हैं तो हम देखते हैं कि वर्षा का पानी है वो तेजी से बहकर निकल जाता है जिससे भूजल पुनर्भरण कम होता है साथियों। इसके अलावा अंजलि जी, हम देखते हैं कि बढ़ती जनसंख्या, तेजी से बदलते शहर, उद्योगों का विस्तार और जलवायु परिवर्तन की उपलब्धता है वो भी प्रभावित कर रही है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि भारत जैसे देश में वर्षा जल संरक्षण का विशेष महत्व है। वर्षा के दौरान बड़ी मात्रा में पानी धरती पर आता है श्रोता साथियों, लेकिन यदि उसे सही तरीके से रोका नहीं जाए या संचित नहीं किया जाए तो उसका बड़ा हिस्सा है वो बहकर नदियों या समुद्रों में चला जाता है।
0: जी जी।
1: वर्षा का जल श्रोता साथियों हम घरों की टंकियों में पाइप लगाकर उसके माध्यम से भी हम एकत्रित कर सकते हैं। श्रोता साथियों, इसे अगर हम ऐसे जल को संचय करते हैं तो हमारे लिए ये बहुत उपयोगी हो सकता है।
0: जी जी।
1: इसके अलावा श्रोता साथियों, उचित संरचनाओं के माध्यम से वर्षा के पानी को जमीन में भी हम पहुंचा सकते हैं जिससे भूजल स्तर है श्रोता साथियों वो भी सही बना रहेगा और हमें पानी की उपलब्धता है वो भी हमें मिलती रहेगी। अंजलि जी, हम देखते हैं कि गांव में तालाब, कुएं, जोहर, नदियां, छोटे बांध और खेत के जो तालाब होते हैं वहां भी हम जल को रोककर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। श्रोता साथियों, इन पारंपरिक जल संरचनाओं की सफाई और देखभाल करके पानी का संरक्षण किया जा सकता है।
0: जी हाँ मनीषा, आपने सही कहा। यही बात करते हैं कि प्रकृति हमें हमेशा उतना ही देती है जितनी उसकी क्षमता होती है।
1: जी हाँ।
0: यदि हम केवल लेते रहेंगे और लौटाएंगे कुछ भी नहीं तो एक दिन प्रकृति भी मौन हो जाएगी। पानी के साथ भी यही सच जुड़ा है। यह केवल हमारी आवश्यकता नहीं बल्कि हमारी धरती के हर जीव की साझा पूंजी है, इसलिए इसका संरक्षण किसी एक व्यक्ति की या एक गांव की या एक सरकार के का काम नहीं है बल्कि पूरे समाज की साझी जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल।
0: आज आवश्यकता इस बात की है श्रोता साथियों कि जल संरक्षण को केवल भाषणों और नारों तक सीमित न रखा जाए बल्कि इसे अपने व्यवहार और जीवन शैली का हिस्सा बनाया जाए। जब हम पानी की एक एक बूंद का सम्मान करेंगे तभी हमारी आने वाली पीढ़ियां भी जल का महत्व समझेंगी। यदि हम आज लापरवाही करेंगे तो भविष्य में केवल पानी ही नहीं बल्कि खेती, रोजगार, स्वास्थ्य और पर्यावरण सब पर गहरा असर पड़ सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि जल है वो प्रकृति का अमूल्य उपहार है और श्रोता साथियों, हम कह सकते हैं कि यह हमारे जीवन का आधार भी है। इसके बिना मनुष्य, पशु पक्षी या पेड़ पौधे या पूरी प्रकृति है वो सुरक्षित नहीं रह सकती। आज जल संकट बढ़ने के पीछे श्रोता साथियों कई ही कारण है, जैसे कि पानी की बर्बादी, भूजल का अत्यधिक दोहन, जल प्रदूषण, पेड़ों की कटाई, बढ़ती आबादी और बदलती जलवायु जैसे अनेक कारण है। श्रोता साथियों, इन समस्याओं का समाधान केवल बड़ी योजनाओं योजनाओं से नहीं बल्कि हमारी छोटी छोटी आदतों से भी संभव है। घर में पानी बचाना, वर्षा जल को संचय करना, तालाबों और कुओं को सुरक्षित रखना, साथी श्रोता साथियों पेड़ लगाना, जल प्रदूषण को रोकना और खेती में पानी का उचित उपयोग करना, ये सभी जल संरक्षण में महत्वपूर्ण कदम है जो हम उठाकर जल संरक्षण कर सकते हैं। श्रोता साथियों, हमें ये याद रखना चाहिए कि पानी की बचत केवल पानी बचाना नहीं है बल्कि जीवन, स्वास्थ्य, खेती और हमारे पर्यावरण के भविष्य को सुरक्षित करना है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि आज आवश्यकता इस बात की है कि जल संरक्षण को केवल भाषणों नारों तक सीमित न रखा जाए बल्कि इसे अपने व्यवहार में लाया जाए। हमारे गाँव में कहावत कही जाती है कि जो किसान पानी को संभालता है वही भविष्य को संभालता है। ये बात केवल किसानों पर नहीं श्रोता साथियों, हम सभी पर लागू होती है। चाहे हम विद्यार्थी हो, गृहिणी हो, युवा हो, शिक्षक हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, हर व्यक्ति अपने स्तर पर जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जब समाज हर वर्ग

0: बल्कि जीवन का सम्मान समझने लगेंगे, उसी दिन से बदलाव की शुरुआत होगी। इसलिए आज से ही हम सभी को यह संकल्प लेना है कि जहां भी पानी बचाने का अवसर मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि सुरक्षित जल ही सुरक्षित जीवन, समृद्ध किसान और स्वस्थ समाज और उज्जवल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि यदि श्रोता साथियों यदि हम आज पानी की एक एक बूंद का सम्मान करेंगे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियों को पानी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। इसलिए श्रोता साथियों आज ही हमें यह संकल्प लेना है कि हम जल बचाएंगे, जीवन बचाएंगे, जल स्रोतों को स्वच्छ रखेंगे, वर्षा की हर बूंद को संजोएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य बनाएंगे। तो श्रोता साथियों जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातें चल रही हैं जल संरक्षण को लेकर, तो ये बातें अंजलि जी हमारे श्रोता साथियों से कुछ छोटी मोटी महत्वपूर्ण रह गई हैं, तो ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुख करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रहे थे जल संरक्षण को लेकर, यहीं अगर अंजलि जी बात करें, जल संरक्षण अगर हम करते हैं तो इससे हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं?
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि इससे हमारे पीने के पानी की उपलब्धता है वो बढ़ती है, कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, बिजली उत्पादन में सहायता मिलती है, साथ ही श्रोता साथियों उद्योगों को पर्याप्त जल मिलता है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है, जैव विविधता सुरक्षित रहती है, प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव है वो कम होने लगते हैं। साथ ही साथियों कहना चाहेंगे कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। श्रोता साथियों, अगर हम जल संरक्षण की चुनौतियों की बात करें अंजलि जी, तो हम देखते हैं कि अगर श्रोता साथियों जल संरक्षण के अनेक उपाय हैं, उनके सामने कई सारी चुनौतियां आती हैं, जैसे कि लोगों में जागरूकता की कमी, जल का अत्यधिक दुरुपयोग, शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन है वो, साथ ही साथियों हम देखते हैं कि कमजोर जल प्रबंधन, पारंपरिक जल स्रोत हैं उनका नष्ट होना, ये सारी चुनौतियां हैं जो जल संरक्षण को रोकती हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे हम कि हम सभी को एक ऐसा भारत बनाना है जहां हर घर तक स्वच्छता पहुंच सके, हर खेत में हरियाली हो, हर तालाब जीवन से भरा हो, कोई भी परिवार पानी की कमी के कारण परेशान न हो, यह सपना असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए आज से ही जागरूकता, अनुशासन और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है।
0: जी हाँ।
1: जल संरक्षण केवल भविष्य की तैयारी नहीं श्रोता साथियों, बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी समझदारी है। जिस दिन हम पानी को संसाधन नहीं बल्कि जीवन का सम्मान समझने लगेंगे, उसी दिन से बदलाव की शुरुआत होगी।
0: बिल्कुल।
1: आज हमें संकल्प लेना होगा कि जहां पानी बचाने का अवसर मिलेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सुरक्षित जल ही सुरक्षित जीवन, समृद्ध किसान और स्वस्थ समाज और उज्जवल भविष्य की सबसे मजबूत नींव होता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि जल प्रकृति के जीवन का मूल आधार है और इसका कोई विकल्प नहीं है। श्रोता साथियों, बढ़ती जनसंख्या, अनियमित शहरीकरण, भूजल का अत्यधिक दोहन, जल प्रदूषण, साथ ही श्रोता साथियों जलवायु परिवर्तन ने जल संकट को गंभीर वैश्विक चुनौती बना दिया है। यदि वर्तमान की पीढ़ी है वो जल के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगी साथियों, तो आने वाली पीढ़ियों को भी पीने योग्य जल के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए जल संरक्षण के लिए एक पर्यावरणीय आवश्यकता यह है साथियों कि हम सामाजिक, आर्थिक और नैतिक हमारा जो दायित्व बनता है उसको निभाएं और जल संरक्षण हम करें और जल को बचाने की हम कोशिश करें। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि जल संरक्षण की सफलता तभी संभव होगी जब सरकार, उद्योग, किसान और शैक्षिक संस्था ही प्रत्येक नागरिक मिलकर अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, वर्षा जल का संचय करेंगे, भूजल स्तर है उसका पूर्ण भरण करेंगे, आधुनिक सिंचाई तकनीकी का उपयोग करेंगे, साथ ही श्रोता साथियों जल स्रोतों को स्वच्छ रखेंगे, वृक्षारोपण करेंगे। तो अंजलि जी, हम देखते हैं कि जल संकट की जो समस्या है वो काफी हद तक कम हो सकती है और हम आने वाली पीढ़ियों के लिए जल है वो सुरक्षित रख सकते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे हम कि कल्पना कीजिए कि यदि किसी सुबह हमारी आँख खुले और नल में पानी की एक भी बूंद ना आए।
0: जी हाँ।
1: खेतों की मिट्टी फटने लगे, तालाबों का तल दिखाई देने लगे, पशु पक्षी प्यास से इधर उधर भटकने लगे और बच्चों को स्कूल जाने से पहले पानी लाने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़े।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, ये केवल कल्पना नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों की तो वास्तविकता बन चुकी है। इसलिए जल संरक्षण जो है वो भविष्य की चिंता नहीं बल्कि आज का सबसे आवश्यक कार्य है।
0: जी हाँ।
1: पानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी से भेदभाव नहीं करता। यह अमीर और गरीब, शहर और गांव, इंसान और जीव जंतु सभी के जीवन का समान आधार है। इसलिए जब हम पानी बचाते हैं तब केवल हम अपनी नहीं बल्कि पूरे समाज और प्रकृति का हित करते हैं। जल का सम्मान करना वास्तव में जीवन का सम्मान करना है।
0: जी हाँ।
1: हमें यह समझना होगा मनीषा कि विकास का अर्थ केवल नई इमारतों, चौड़ी सड़कें या आधुनिक सुविधा नहीं बल्कि वास्तविक विकास वह है जहाँ नदियाँ स्वच्छ हो, तालाब भरे हों, कुएं जीवित हों, खेतों में हरियाली हो और आने वाली पीढ़ियों को पानी के लिए संघर्ष न करना पड़े। यदि हमारी प्रगति प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करके हो रही है तो वह प्रगति नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक गंभीर चेतावनी है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ श्रोता साथियों को कहना चाहेंगी कि हमारी भारत की जो पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियां हैं, जैसे कि तालाब, बावड़ियां, कुएं और जोहड़, श्रोता साथियों यह सब है वो यह सिद्ध करती है कि हमारे पूर्वज है वो जल को जल के महत्व को भली भांति समझते थे।
1: जी जी।
0: आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान का श्रोता साथियों समन्वय करके हम जल संसाधनों को अधिक प्रभावी ढंग से और टिकाऊ प्रबंधन कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने दैनिक जीवन में जल की एक एक बूंद बचाने का संकल्प ले लें अंजलि जी, तो हम देखते हैं कि सामुदायिक प्रयास से ज्यादा यह और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि हम जल को बचा सकेंगे। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि जल संरक्षण केवल वर्तमान की आवश्यकता नहीं है बल्कि भविष्य की सुरक्षा का आधार भी है। जल का सम्मान करना, उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना और उसे प्रदूषण से बचाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। आज बचाई गई हर बूंद आने वाले कल के लिए जीवन समृद्धि और पर्यावरण संतुलन की रक्षा करेगी। इसलिए श्रोता साथियों हमें सदैव यह संकल्प लेना चाहिए कि जल बचाए जीवन बचाए, क्योंकि श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि वास्तव में जल है तो कल है।
1: बिल्कुल मनीषा, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई है कि पानी का संरक्षण हमें कैसे करना है, इसके क्या फायदे हैं और क्या महत्व है।
0: बिल्कुल,
1: अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे।
0: जी हाँ।
1: ताकि आज का ये कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
0: नमस्कार साथी दोस्तों, आप सभी को छोड़े चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।

0: सांबुनो, घर तकी निकरते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हेती जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपनी साथी मनीषा पटेल और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, आप भी हमारे कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं, आप भी आपकी फरमाइश के गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप भी आपकी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंसू द्वारा उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है वारिस, गीत के बोल हैं मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है बेगम इमरान नाज नवाजिक शेख दानिक शेख अमन अफरीदी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेदी शाद, अजरात अबू समझी। बनारस से जुड़ रहे हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरीन अंसारी, आफिया परवीन जी। इस गीत के अनुरोध करता है जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकी स्टोर, रोजी डिकी स्टोर, पर्ल डिकी स्टोर, विलेज डिकी स्टोर। इसी भी जुड़ना चाह रहे हैं भागपत यूपी से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। फिल्म का नाम है वारिस और इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। तो आइए सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाग रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीतों का सिलसिला बना हुआ है और फरमाइश का पहला गीत भी हमने सुन लिया, तो बढ़ना चाहूंगी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दुर्गा कोलनी हांसी से। फिल्म का नाम है विजय पद, गीत के बोल हैं, राहों में उनसे मुलाकात हो गई। इस गीत को आवाज़ दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है राजू मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू और बबीता जी मिलगानी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। चोरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, माला ठाकुर, मानुषानु, बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं गंजुटवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी। तो आइए साथियों, सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, राहों में उनसे मुलाकात हो गई। इस गीत को आवाज़ दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। तो साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में।

श्रोता साथियों, कुछ मुलाकातें किस्मत लिखती है और कुछ यादें दिल संभाल कर रख लेता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर हर एक मुस्कान से शुरू होता है। श्रोता साथियों, हर मुलाकात एक कहानी होती है। कोई पल भर के लिए मेहमान बनता है तो कोई उम्र भर के लिए हमारी याद बन जाता है। तो श्रोता साथियों, बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कोहका बलाई सी। फिल्म का नाम है अपने गीत के बोल ही अपने तो अपने होते हैं। इस गीत की फरमाइश करता है दीपक खटक, प्रमिला खटक, चंद्रनगर से जुड़ना चाह रहे हैं सुरेश डोमिन और शालिनी डोमिन, लाहौरा से जुड़ रहे हैं डोमिन नेहा और प्रभा जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे डुमराव से लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती, स्टार मोहम्मद समी जी। चंद्रनगर सहारनपुर से जुड़ रहे हैं महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यामिनी यादव और नरेंद्र जी यादव। इस गीत के अनुरोध करता है महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रतिजी संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं अपने तो अपने होते हैं। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाग रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, अपने तो अपने होते हैं। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पूना जक्सन मस्तानपुरा से। फिल्म का नाम है सिलसिला, गीत के बोल हैं, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। इस गीत को आवाज़ दी है कुमार सोनू जी ने और लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतना भगत, सुलोचना जी भगत। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बिहार से, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चेतनी मस्किन, मेगा मस्किन दिल्ली से जुड़ रहे हैं। चंडीगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं राहुल खुराना, रजिता खुराना, केशु खुराना, रिधानजी खुराना। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चनाताई गुड़ाने, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामन शेंडे, प्रतिभाजी गुड़ाने, महेश राम टेके जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। फिल्म का नाम है सिलसिला और इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार जी ने और लता मंगेशकर जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

श्रोता साथियों, अभी हमने किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थी, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। इसी बीच बढ़ना चाहूँगी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भागवत से। फिल्म का नाम है गदर, गीत के बोल ही उड़ जा काले कावा। इस गीत की फरमाइश करता है जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं अंबाला हरियाणा से। रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश रावल, प्रियंका, मन्नत, गुरशब्द, गुरकीरत सिंह राहुल, विजेंद्र जयपाल और गुरशब्द सिंह राहुल। इसी बीच जुड़ना चाह रहे भद्रावती से अब्दुल लोहेवाला, शाहिदा शेख, शाहिल जी शेख, अब्दुल्ला जी शेख। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं उड़ जा काले कावा। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जमशेदपुर से। फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मेली, गीत की बोल है सुन साहिबा प्यार की धुन। इस गीत की फरमाइश करता है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी जी भाटिया। इसी बीच जुड़ना चाह रहे छत्तीसगढ़ से छन्नूला श्रीवास, सनिता पुष्पा श्रीवास, रंजन शाहू, हेमन नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से जुड़ रही उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मिका, सृष्टि बन्नी, आरिषि शोरिया, दिनेश जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं सुन साहिबा प्यार की धुन। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मेले। तो आइए साथियों सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मुंगी से। फिल्म का नाम है सलामी, गीत के बोल हैं चेहरा क्या देखते हो। इस गीत की फरमाइश

ऐश करता है बाबा साहेब कणकर, साकरबाई कणकर, परमेश्वरी रोहिणी, श्रावणी ईश्वरी और कणकर परिवार की सभी सदस्यगण जुड़ रही हैं। इसे भी जुड़ना चाह रहे सलार पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन और केसरुद्दीन जी। इस गीत के अनुरोध करता है मराठवाड़ा से समीद मशरूम, साइना हसन, आक्सा नाजिया, आफिया और इब्राहिम जी। जौनपुर से जुड़ना चाह रहे इशाद अंसारी, कामरान अरशादी, अरमान इरशाद, नवेद इशरात, अजरात अबुस्सम जी। बनारस से जुड़ रहे हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरिन अंसारी, आफिया परवीन जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। फिल्म का नाम है सलामी और इस गीत को आवाज़ दी है आशा भोसले जी ने और कुमार सोनू जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है राम लखन, गीत के बोल हैं तेरा नाम लिया तुझे याद किया। इस गीत की फरमाइश करता है सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, आनंद राठौर, श्रीमती गिरिजा जी राठौर, लोके जोशी, श्रीमती पायल जी जोशी, कुमारी अंकिता जोशी, बीबी विदय जोशी। अब खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं अब्दुल गफ्फार डावर जी। मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं श्रीमती जयवंती जी केवट और पूनम नायडू जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं सनावत से मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद हासिम, मोहम्मद इरफाक जी। इस गीत के अनुरोध करता है बीड़ शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर गटे, संगीता गटे, साक्षी गटे, रामनिवास अग्रवाल, धनजय बिट्टू, पीबी कुतलेश जी। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं तेरा नाम लिया तुझे याद किया। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाग रेडियो 90.8 FM पर।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, और स्वागत है श्रोता साथियों आप सभी का फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश का जो सिलसिला है वो हमारा आपके साथ रोजाना बना रहता है, सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप एसएमएस करते हैं। श्रोता साथियों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं और आप भी अपने फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं और हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं। तो जैसा कि श्रोता साथियों, आज भी ये सिलसिला सुबह 11 बजे से हमारा आपके साथ बना हुआ है, जिसे आप सभी सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता मनीषा पटेल के साथ में। और अब आप इसे आगे सुनने वाले हैं मेरे साथ, यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में। तो श्रोता साथियों, फरमाइशों के सिलसिले को यूं ही आगे बढ़ाते हुए मैं जुड़ चुकी हूं आप सभी के साथ और बढ़ना चाहूंगी हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है बागपत यूपी से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों आओ प्यार करें, गीत के बोल है चांद से पर्दा कीजिए। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में। नाम बताना चाहूंगी बागपत यूपी से हैं आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्कान सादिक अली खान, सारिक अली खान। और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, जुड़ रहे हैं भूमिका कुमार, नरेश चौहान जी, मनोज कुमार मीणा जी, मेघराज मीणा जी। और भी दोस्त इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं, श्रोता साथियों जुड़ रहे हैं सुरेश जी, विक्रम सिंह, लक्ष्मण चौधरी, चंद्रपाल, राय प्रसन्न, महावीर, देवीलाल, राजा राम जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं चांद से पर्दा कीजिए।
1: ठीक है, मैं गाता हूँ।

दोस्तों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगी सहारनपुर से। फिल्म का नाम है हीरो। गीत के बोल है, तू मेरा जानू है, तू ही मेरा दिलबर है। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विज डिकेस्ट्रो जी। इसी बीच पाड़ी कला से जुड़ना चाह रहे पुष्पा कुमार, हेमंत टेलर जी, रमेश लाल जी, प्यारे लाल, श्याम लाल, घनश्याम जी, राधेलाल, लाला राम जी, अरविंद, राहुल, जसवंत जी। दिल्ली से जुड़ रहे हैं गमनदी जी, मेघराज मीणा जी, कपिल सिंह जी, सत्येंद्र जी, नरेश चौहान, जरविंदर मनेरिया, सत्यम मीणा, शिवम, संजीव जी। इसी बीच पाटापारा से हैं कमलेश जी, रोहित जी, वैजेंद्र कुमार जी, अरुण गोयल जी, गणेश लाल, जसवंत, संजय, अखिलेश जी, हेमराज मीणा जी। मड़ियाऊ जौनपुर से श्रोता साथी हैं इरशाद मंसारी, कामरान, इरशाद अरमा, इजरा, अजरा तबस्सम जी। बनारस से जुड़ना चाह रहे हैं मजदूल अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, अफिया मोहम्मद काफिर अंसारी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जो सुनना चाहते हैं इसी गीत को। साथियों दिल्ली से ही जुड़ रहे हैं सतराम जी, हरियाला जी, हेमंत और आकाश जी, देवेश, विपिन शर्मा, महेंद्र, विकास, दाम्पत्य, शंबल, शामूलाल जी और श्यामलाल जी, रामलाल जी, पंकज, राहुल शर्मा जी और मेघराज मीणा जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, तू मेरा जानू है, तू ही मेरा दिलबर है।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी, गंजू द्वारा उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों कुर्बान। गीत के बोल हैं ये धरती चांद सितारे। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं गंजू द्वारा उत्तर प्रदेश से। मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना ना, नाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव जी। इसी बीच जौनपुर से जुड़ रहे इरशाद बंसारी, अरमान, नवेद इज्जा, अजरा तबस्सुम। और भी श्रोता साथी हैं जो जुड़ रहे हैं, रामलाल जी, पंकज जी, राहुल शर्मा जी, हरिशंकर जी, हेमराज, घनश्याम जी, प्रदीप शिरोमान, संतोष, सुरेश, मोहन और कल्याण जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश से ही। नाम बताना चाहूंगी, सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा, तन्वी बोट, सत्यम जी, सीताराम जी, कल्पना जी। और भी हमारे दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं नाहरगढ़ से। आपको नाम बताना चाहूंगी श्रोता साथियों, हंसराज जी, विकास, वीरेश चौहान जी, मिथिलेश तिवारी जी, वीरेंद्र सहवाग जी, देवेंद्र कटारा, राधेलाल शर्मा, संदीप चौहान, गणेश लाल जी, रामेश्वरम जी, अवधेश कुमार जी, सुंदरलाल प्रजापति जी, दीपक कुमार चौहान, अनूप चौहान, मेघराज मीणा जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ये धरती चांद सितारे।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था और इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत आया है श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी, कोरबा छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का। गीत के बोल हैं श्रोता साथियों, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के। इस गीत को आवाज दी उदित नारायण जी और अनुराधा पोडवाल जी ने। फरमाइश करता छत्तीसगढ़ कोरबा से हैं लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, मुन्नू शुन्नु कान्हा जी और हरिप्रिया जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं चित्तौड़गढ़ से निकिता शर्मा, अरविंद राजेश शर्मा जी। चिड़ियावासा से हैं राजू राजकुमार जी, राजेश जी, नरेश चौहान, मुकेश शर्मा, महेंद्र इसरत और वीरेंद्र जी। जुड़ना चाह रहे हैं प्रतापपुर से हैं वीरेंद्र, शैलेंद्र, सत्यम जी, प्राणी जी, सुरेंद्र मीणा जी, नेवेंद्र प्रजापत जी और देवेंद्र प्रजापत जी, अभिनव दयाल शर्मा जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं सियापुर से हंसराज सिंह, विकास, वीरेश चौहान, मिथिलेश, वीरेंद्र, देवेंद्र जी, राधेलाल जी चौहान, संदीप चौहान, गणेशलाल चौहान, गणेशलाल चौहान, अवधेशरा, सुंदरलाल जी, रामेश्वर जी, दीपक कटारा जी, राजेश कटारा जी, अनुप मेघवाल जी। इसी बीच और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं श्रीरामपुर महाराष्ट्र से एड नाशिर शेख, नाजा नाशिर शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मिखाल मुजावर जी। इसी बीच हमारे दोस्त हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों। ये फरमाइश हमारे बीच आई है भिलाई छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है दोस्तों निगाहें। गीत के बोल हैं सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में, कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से दीपक शाक्य, दीपक खंडवा, प्रमिला खट्टक, सुरेश डोमेंद्र जी और सुरेश डोमेंद्र, सोनाली डोमेंद्र, डोली मिन्हास जी, प्रभा मिन्हास जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, हरेंद्र कुमार, हरिशंकर प्रभादी और प्रकाश दीपक चंद्र जी, शंकर श्याम सुंदर, सुरेंद्र चौहान, अनिल डामोर जी, अभिषेक कटारा जी, हरिचरण कुमार जी, महेंद्र डामोर, सीताराम डामोन जी। रायगढ़ बिहार से हैं पन्नालाल जसवंत जोशी, हविशंकर जी गुप्ता, रमेश प्रसाद जी, पंडित प्रजापत, मनोहर हनुमंत, ओम शंकर रावत जी, सीताराम राधेलाल जी, दिनेश चंद्र जी। और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, विशाल जी, संतोष पांडे, मेघराज मीणा जी जो कि छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं, और भी दोस्त हैं रायगढ़ बिहार से ही उमारा, शफी उमा, याकूब मुजमा, दीपक उमा, करलीम उमा, कमल उमा जी, खंडवा से दुर्गा कुमारी, रापेश ताई और सपना जी, डुमराव से लालू बाबू दीवाना, दिव्या भारती जी, चंद्रशहर सहारनपुर से महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यामिनी यादव, नरेंद्र यादव। और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, गंजुडवारा से हैं शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु अंसारी, कलीम अंसारी जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं सावन के झूलों ने मुझको बुलाया।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों, अगली फरमाइश का गीत है आपको मैं बताना चाहूँगी, जुड़ना चाह रहे हैं, फिल्म का नाम है श्रोता साथियों ताल और गीत के बोल हैं ताल से ताल मिला। फरमाइश करता है इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, जो सुनना चाह रहे हैं इसी गीत को, गंजुडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लो परवेज बेगम इमरानाथ नाजिश शेख दानिश शेख अमन आफरीदी राधा नामदेव जी और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। नाम बताना चाहूँगी, श्रोता साथी जुड़ रहे हैं दिनेश चंद्र जी, विशाल, संदीप पांडे, सीताराम, ओम शंकर रावत जी, हनुमंत मनोहर जी, बंटी प्रजापत, रमेश प्रसाद, रविशंकर गुप्ता जी, यशवंत कुमार जी और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। दुर्गा कॉलोनी से हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। इसी बीच हमारे और भी साथी हैं जो भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं, सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरबिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। जुड़ रहे हैं दोस्त हैं बिलास छत्तीसगढ़ से दीपेश शाक्य, जोकित शाक्य, सक्षम शाक्य, मीना शाक्य। इसी बीच और भी श्रोता साथी हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं, आपको नाम बताना चाहूंगी, साथी जुड़ रहे हैं आनंद संदीप कुमार जी, अखिलेश जी, भोला जी, भैयालाल, भिवानी कुमार जी, राम साहे, राकेश राम सेवक, सत्येंद्र जी, रविंद्र, शैलेश, मेघराज, मीणा जी और श्यामलाल जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं। नाम बता दूं श्रोता साथियों, दलपत बलिकर कुमार जी, सोनू, नरेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार, कप्तान चौहान और माता दीन कटारा जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल है ताल से ताल मिला।
1: तुम तनक दुन, तनक दुन, तुम तनक दुन।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है मस्तान पुन्ना जंक्शन से। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है, गीत के बोल है अरे रे अरे ये क्या हुआ। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना भगत। और भी दोस्त इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, मीना मस्किन, आशीष जरा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल रचिता खुराना जी। अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुणाने, अर्चना ताई गुणाने, परम प्रसिद्ध हीरामन शेंडे जी, प्रतिभा गुणाने जी, जगमोहन सिंह वजापत, मनीष देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधुनतन, शिषपाल अकेला, तेजपाल प्रजापति जी। और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, कश्मीर से फैजारा मिजराउद्दीन, नजमुद्दीन, क्वासिरुद्दीन। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं अरे रे अरे ये क्या हुआ। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, आपको बताना चाहूंगी कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। इस गीत के साथ ही श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करने की अनुमति चाहेंगे। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम आपकी फरमाइश में कुछ नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाक रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। साथियों, अब वक्त है शाम के खास कार्यक्रमों का जो आपके हर पल को बनाएगा खास, तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए आज के शाम के कार्यक्रम की रूपरेखा। साथियों, शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति शांति और सुकून से भरे सुरों के साथ दिन भर की थकान को अलविदा कहने का समय। इसी के साथ अगला कार्यक्रम होगा शाम 5:30 पर युवाओं की आवाज, जहां सपने बोलते हैं, विचार उड़ान भरते हैं और युवा अपनी बात खुलकर रखते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी कि मैं और कशिश पाराशर। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है श्रोता साथियों शाम 6 बजे कार्यक्रम सच्चा बचपन। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे बच्चों की मासूमियत, मुस्कान और बचपन की यादों से भरा प्यारा सा सफर। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है खेतीवाड़ी, इसे आप सुन पाएंगे 6:30 पर। ये कार्यक्रम किसानों के काम की बात, जमीन से जुड़ी सच्ची जानकारी और अनुभव है। इसे लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी के मैं। श्रोता साथियों, जैसे कि कार्यक्रम की रूपरेखा चल रही है तो हम अगला कार्यक्रम आपको बताते हैं। अगला कार्यक्रम शुरू होगा 7 बजे और इस कार्यक्रम का नाम है सच्चा स्वराज। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे समाज, सोच और सच्चाई से जुड़ी आवाज जो हमें जागरूक बनाती है। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम होगा हमारा स्वास्थ्य, जो कि सेहत और सम्मान की बातों के साथ होगा। इसे आप सुन पाएंगे 7:30 पर। इसे लेकर आएंगी आरजे कशिश पाराशर और हमारे रेडियो साथी मनीषा पटेल। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है समस्या समाधान, इसे आप सुन पाएंगे 8 बजे। तो श्रोताओं, जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा मैं आपको बता रही हूँ तो अंत में आप सुनेंगे रात 9 बजे शामी कसले। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सुनेंगे अल्फाज जो छू जाए, एहसास जो ठहर जाए, सुकून भरी रात की शुरुआत। तो श्रोताओं, शाम की घड़ियां यूं ही नहीं गुजरती, ये वो पल है जहाँ भक्ति भी है, युवा सोच भी है, बचपन की हंसी भी है, किसान की मेहनत भी है, सच की आवाज भी है, सेहत और सम्मान की बात भी है, संगीत का जादू भी है और गजलों का सुकून भी है। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागर रेडियो। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

संतानों के भविष्य को सुख से भरने का प्रयत्न करना, यही हर माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है, जिन्हें आप इस संसार में लाए और जिनके कर्मों से ये जगत आपका भी परिचय पाएगा भविष्य में। उनके भविष्य के सुख की योजना करने से अधिक महत्व और हो भी क्या सकता है। किंतु सुख और सुरक्षा, क्या ये मनुष्य के कर्मों से प्राप्त नहीं होते?

0: माता पिता के दिए हुए अच्छे या बुरे संस्कार, उनकी दी हुई योग्य अथवा अयोग्य शिक्षा, क्या आज के सारे कर्मों का मूल नहीं? संस्कार और शिक्षा से बनता है मनुष्य का चरित्र। अर्थात माता पिता अपनी संतानों का जैसा चरित्र बनाते हैं, कैसा ही बनता है उनका भविष्य। किंतु फिर भी अधिकतर माता पिता अपनी संतानों का भविष्य सुरक्षित करने की चिंता में उनका चरित्र निर्माण का कार्य भूल ही जाते हैं। वस्तुतः जो माता पिता अपनी संतानों के भविष्य की चिंता करते हैं, उनकी संतानों को कोई लाभ नहीं होता। किंतु जो माता पिता अपने संतानों के भविष्य की नहीं, उनके चरित्र का निर्माण करते हैं, उन संतानों की प्रशस्ति समस्त संसार करता है। स्वयं विचार कीजिए। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती है? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां, नई नई विडंबनाएं, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पद पर वो अपने अगले पद का निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है, कहीं पुरानी योजना उसे खाई में ना ढकेल दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है, ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग की प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
5: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
3: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
5: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
5: लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बात रहने वाली है कशिश, सफलता के लिए मेहनत के साथ ही सोचने का तरीका बदलना भी जरूरी है।
3: बिल्कुल
5: श्रोताओं, मनुष्य का भविष्य उसके भाग्य से नहीं बल्कि उसकी सोच से तय होता है। हम देखते हैं कशिश के जीवन में सफलता प्राप्त करने की इच्छा हर व्यक्ति के मन में होती है।
3: बिल्कुल,
5: कोई शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहा है तो कोई व्यवसाय में, कोई नौकरी में तो कोई समाज सेवा में अपना नाम कमाना चाहता है। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि केवल कड़ी मेहनत ही सफलता का आधार है।
3: जी बिल्कुल,
5: जबकि वास्तविकता इससे कहीं अधिक व्यापक है। श्रोताओं, मेहनत सफलता का आवश्यक आधार है, लेकिन अगर उसके साथ सही सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलने की क्षमता न हो तो मेहनत का पूरा परिणाम नहीं मिल पाता है।
3: जी हाँ जागृति जी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर हम हमारे युवा साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि हम शुरुआत में पहले मनोरंजन करते हैं और फिर बातचीत की शुरुआत करते हैं, तो क्यों ना यहाँ भी पहले एक प्यारा सा गीत श्रोता साथियों को सुनवा दें हम।
5: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि युवा साथियों, गीत से पहले विषय से जुड़ी बातचीत हमारी आपसे चल रही थी। जैसा कि विषय बताया था कि बात कर रहे हैं सफलता के लिए मेहनत के साथ सोचने का तरीका बदलना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि जागृति जी, सफलता का सपना हमारे युवा साथी देखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, तो कोई कलाकार, तो कोई ऐसे भी युवा साथी हैं जो अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।
1: जी हाँ।
0: लेकिन जब सफलता देर से मिलती है या बार बार असफलता सामने आती है, तो बहुत से युवा साथी केवल अपनी मेहनत को दोष देते हैं और ये मान लेते हैं कि किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। जबकि सच्चाई तो ये है जागृति जी कि केवल मेहनत या सफलता की गारंटी होती नहीं है। मेहनत के साथ साथ हमारी सोच, हमारा नजरिया और समस्याओं को देखने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।
1: बिल्कुल कशिश, आज का युग ज्ञान, नवाचार और प्रतिस्पर्धा का युग है। केवल अधिक मेहनत करने वाला ही नहीं, बल्कि समझदारी से मेहनत करने वाला व्यक्ति भी आगे बढ़ता है।
0: जी बिल्कुल।
1: इसीलिए कहा जाता है कि हार्ड वर्क, स्मार्ट थिंकिंग, पॉजिटिव माइंडसेट, इन सब को मिलाकर रियल सक्सेस यानी कि सफल लोग केवल अधिक काम नहीं करते, बल्कि सही दिशा में काम करते हैं और हर चुनौती को सीखने का अवसर मानते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। श्रोताओं, विशेषज्ञ भी मानते हैं कि लक्ष्य अगर स्पष्ट हो, चुनौतियों को सीखने का अवसर समझना हो और लगातार स्वयं को बेहतर बनाना सफलता की संभावना बढ़ाता है।
0: जी हाँ, कई बार हम देखते हैं कि इंसान दिन रात मेहनत करता है साथियों।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन वह पुराने तरीके से अगर काम करता रहेगा तो नई सीखने से बचेगा और बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा तो हर समस्या में केवल मुश्किलें ही उसे दिखेंगी।
1: जी हाँ।
0: तो हम कह सकते हैं कि उसका जो मेहनत का पूरा परिणाम है वो उसे नहीं मिलेगा जागृति जी। इसलिए आज के दौर में ये कहा जाता है कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट थिंकिंग भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: युवाओं के लिए विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का समय तेजी से बदल रहा है, ऐसा हम देख रहे हैं।
1: जी हाँ।
0: नई तकनीक है, नए अवसर है, नई चुनौतियां हैं और जो चीजें हैं वो हर दिन हमारे सामने आ रही है। ऐसे में श्रोता साथियों, केवल मेहनती होना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी सोच को भी विकसित करना जरूरी होता है।
1: बिल्कुल कशिश, सफलता केवल धन, पद या प्रसिद्धि का नाम नहीं है श्रोताओं। जैसा कि हर कार्यक्रम के माध्यम से हम ये बातें आपको बताते ही हैं।
0: बिल्कुल,
1: सफलता का वास्तविक अर्थ है कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें,

0: हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें, समाज और राष्ट्र के लिए हम उपयोगी बने, निरंतर सीखते हुए स्वयं का विकास करें, साथ ही आत्मसंतोष और आत्मविश्वास प्राप्त करना। हर व्यक्ति की सफलता की परिभाषा अलग हो सकती है कशिश, लेकिन उसकी नींव मेहनत और सही सोच पर ही टिकी होती है।
1: जी बिल्कुल,
0: मेहनत सफलता का पहला और सबसे आवश्यक आधार है। बिना परिश्रम के कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को साकार नहीं कर सकता है। इसीलिए श्रोता साथियों, मेहनत हमें अनुशासन सिखाती है, धैर्य सिखाती है, हमारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाती है, साथ ही अनुभव प्रदान करती है और कठिनाइयों का सामना भी करना सिखाती है।
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं कशिश कि किसान खेत में दिन रात मेहनत करता है तभी वो अन्न पैदा करते हैं, खिलाड़ी वर्षों तक अभ्यास करते हैं तभी वो पदक जीतते हैं।
1: बिल्कुल,
0: युवा साथी नियमित अध्ययन करते हैं, नियमित परीक्षाएं देते रहते हैं तभी वो सफल होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मेहनत सफलता की पहली सीढ़ी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा कि मेहनत सफलता की पहली सीढ़ी है, लेकिन हमारे युवा साथियों को हम ये बताना चाहेंगे कि मेहनत भी तभी प्रभावी होती है जब उसके पीछे सही दिशा और सही सोच हो। यदि कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर पूरी ताकत से दौड़ रहा है जागृति जी, तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मेहनत के साथ सही दिशा का होना भी उतना ही जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: हम कह सकते हैं कि सोच भी सफलता की दिशा तय करती है। जैसे कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार होता है।
0: बिल्कुल,
1: और फिर वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है युवा साथियों। ऐसे में यदि कोई युवा हर चुनौती को अवसर माने, कठिन परिस्थितियों में सीखने का प्रयास करे, और वही युवा हर समस्या को अपनी हार मान ले, तो वह आगे बढ़ने से पहले ही रुक जाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए युवा साथियों कार्यक्रम के माध्यम से आपको यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मेहनत के साथ साथ सही दिशा का चुनाव भी करना होगा।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जो बातें कर रहे हैं कि सफलता के लिए मेहनत के साथ ही सोचने का तरीका बदलना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें हम ऐसे ही करते रहेंगे आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: के व्यक्तित्व और निर्णय का आधार होती है। जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही बनता जाता है और उसका व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। साथियों, अगर हम सकारात्मक सोच वाले हैं तो समस्याओं में अवसर खोजेंगे, असफलता से सीखते रहेंगे, निराश नहीं होंगे, नई चुनौतियों को स्वीकार करेंगे और लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। जबकि नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति छोटी कठिनाइयों से भी हार मान लेता है।
1: बिल्कुल,
0: जो व्यक्ति मानता है कि वो सीख सकता है, बदल सकता है और स्वयं को बेहतर बना सकता है, वही लगातार आगे बढ़ता है। ऐसी सोच व्यक्ति को नई चुनौतियों को स्वीकार करने, गलतियों से सीखने और निरंतर सुधार करने के लिए प्रेरित करती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि सकारात्मक सोच का मतलब केवल खुश रहना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है कि हर परिस्थिति में समाधान खोजने की आदत हमारे अंदर हो।
0: बिल्कुल,
1: हम असफलता को भी सीखने का अवसर माने, खुद पर हमारा विश्वास श्रोता साथियों मजबूत हो और बदलाव को अपनाना हम जानते हो, लगातार सीखने की आदत भी हमारी हो। बहुत से लोग जागृति जी ये सोचकर आगे नहीं बढ़ते हैं कि वे नहीं कर पाएंगे, या फिर उनके पास साधन नहीं है, या उनकी उम्र निकल गई है, या फिर कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि हमारे परिवार में किसी ने ऐसा कभी नहीं किया। श्रोता साथियों, ऐसी सोच व्यक्ति की क्षमता को सीमित कर देती है। दूसरी ओर जो लोग ये सोचते हैं कि मैं सीख सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा या करूंगी, गलतियों से सीखेंगे, वही लोग आगे बढ़ते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और यही सोच का अंतर जागृति जी एक सामान्य व्यक्ति को असाधारण व्यक्ति बना देता है।
0: जी हाँ कशिश, आज सफलता के लिए केवल हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क की भी जरूरत होती है। स्मार्ट वर्क का अर्थ होता है श्रोता साथियों की सही योजना बनाना, समय का सही उपयोग करना, हमारी जो प्राथमिकता है उसे तय करना, आधुनिक तकनीक का उपयोग करना, अनुभव से सीखना और कम संसाधनों में अधिक परिणाम प्राप्त करना। जब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क मिल जाते हैं कशिश, तब सफलता और अधिक निश्चित हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: सफल व्यक्ति असफलता को अंत नहीं मांगते हैं। जैसा कि वो अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं, नई रणनीति बनाते हैं, स्वयं में सुधार करते हैं और फिर से प्रयास करते हैं। जैसे कि थॉमस एडिसन ने हजारों असफल प्रयोगों के बाद बल्ब का सफल आविष्कार किया। अगर वे असफलताओं से डर जाते श्रोताओं, तो शायद दुनिया आज इतनी रोशन न होती।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ हमारे साथियों से हम ये भी कहना चाहेंगे कि दोस्तों, यदि आप सचमुच अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो केवल मेहनत की तरफ कदम मत बढ़ाइए, अपनी सोच को भी बदलिए, समस्याओं में अवसर देखिए, आलोचना को सीख में बदलिए, हार को अनुभव में बदलिए और डर को साहस में बदलिए। साथियों, हर दिन खुद को बेहतर संस्करण करने की कोशिश कीजिए। ऐसे में याद रखिए कि मेहनत आपको मंजिल तक पहुंचाती है, लेकिन सही सोच उस मंजिल को हासिल करने का रास्ता आपको दिखाती है।
0: बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि आज के युवा भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर वे मेहनत के साथ अपनी सोच को भी विकसित करेंगे तो वे स्वयं, समाज और राष्ट्र का भविष्य बदल सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि हमारे युवा साथियों को बड़े सपने देखने चाहिए, नई नई चीजें सीखनी चाहिए, आलोचना से सीखना चाहिए, तकनीक का सकारात्मक उपयोग करना चाहिए, साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात कि समय का सम्मान करना होगा और निरंतर आत्म मूल्यांकन करना होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हमारे युवा साथियों को हम बताएं, तो दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद सकारात्मक सोच और निरंतर सीखने की भावना से भारत के मिसाइल मैन बनने का गौरव प्राप्त किया।
1: बिल्कुल,
0: स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और कर्मयोग का संदेश दिया। महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी जी ने अपनी सोच और सिद्धांतों से पूरे राष्ट्र को नई दिशा दी।
1: जिन
0: सभी महान व्यक्तियों में मेहनत के साथ दूरदर्शी सोच भी थी।
1: बिल्कुल जागृति जी, और हम कह सकते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये बात सत्य भी है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि मेहनत उसकी नींव है लेकिन सही सोच उसकी दिशा है। साथियों, यदि मेहनत बिना सही सोच के होगी तो परिणाम सीमित रह सकते हैं, वहीं सकारात्मक, दूरदर्शी और सीखने वाली सोच साधारण मेहनत को भी असाधारण उपलब्धियों में बदल सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए हमारे युवा साथियों को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह केवल अधिक मेहनत ही नहीं करेंगे बल्कि हर दिन अपनी सोच को बेहतर बनाने की कोशिश में लग जाएंगे।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि साथियों, जब मेहनत और सही सोच एक साथ चलते हैं ना, तब सफलता केवल सपना नहीं रहती बल्कि जीवन की सच्चाई बन जाती है।
0: बिल्कुल कशिश, ये स्पष्ट है कि सफलता केवल कठिन परिश्रम का परिणाम नहीं होती है, बल्कि सही सोच, स्पष्ट लक्ष्य, सकारात्मक दृष्टिकोण और निरंतर सीखने की इच्छा का भी परिणाम होती है।
1: बिल्कुल,
0: मेहनत व्यक्ति को आगे बढ़ाती है जबकि सही सोच उसे सही दिशा देती है। दिशा के बिना गति व्यर्थ है और गति के बिना दिशा अधूरी है।
1: बिल्कुल,
0: आज हम देखते हैं कि बदलते समय में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलना जानता है, अपनी गलतियों से सीखता है और हर चुनौतियों को अवसर में बदल देता है।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए हमें केवल अधिक मेहनत करने का संकल्प नहीं लेना है बल्कि सोच को भी व्यापक, सकारात्मक और दूरदर्शी बनाना होगा।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि श्रोताओं, मेहनत सफलता के द्वार तक पहुंचाती है लेकिन सही सोच उस द्वार को खोलती है। जब

0: परिश्रम और सकारात्मक सोच साथ चलते हैं कशिश, तब सफलता केवल एक संभावना नहीं बल्कि एक निश्चित उपलब्धि बन जाती है।
1: बिल्कुल जागृति जी। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी रही, और अब जैसा कि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना एक और गीत श्रोता साथियों को यहाँ पर सुनवा दें हम।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।

0: भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनो, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां या आपड़े नी कितनी शांति मिले है। जैया हवा में आपड़े हाल हां ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नथी बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: ओ अनी माटी में जाऊं हूं, अनी माटी तकीस जाना जाऊं हूं। मैं खेत हमारा बीज बोया, वो पसंद बहाई वो विश्रम करो तो पसे बाप दादा ने जमा आते मारा अधिकार के नती। सूरी जन्म तक की सत्तार है, कानून ने आ बात मानी है। ना पन्ना पुते तेरे हक को ले सके, ना रिवाज और सच में बदले सके। बाप दादा ने जमीन सूरी ने अधिकार, सूरी ने हक इन्हें पहचान।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन को अपने नियत समय पर और एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों, हमारी बातचीत का विषय ही स्कूल बस स्टॉप को लेकर। जी हाँ श्रोता साथियों, हर सुबह जब बच्चे अपने अपने स्कूल जाने के लिए घर से निकलते हैं तो उनके साथ कई सपने भी सफर पर निकलते हैं। कोई नया पाठ सीखने की खुशी लेकर चलता है, कोई अपने दोस्तों से मिलने की उत्सुकता लेकर चलता है, तो श्रोता साथियों कोई अपने भविष्य को बेहतर बनाने का सपना लेकर। लेकिन श्रोता साथियों, इस पूरे सफर की शुरुआत एक छोटी सी जगह से होती है, वो है श्रोता साथियों बस स्टॉप। अक्सर श्रोता साथियों हम देखते हैं कि बस स्टॉप को केवल हम बस का इंतजार करने की जगह समझ लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यहीं से बच्चों में अनुशासन, धैर्य, सहयोग और सुरक्षा जैसी अच्छी आदतें विकसित होती हैं। कभी कभी बस आते ही कुछ बच्चे जल्दी से चढ़ने की कोशिश में धक्का मुक्की करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि पहले चढ़ जाने से जल्दी अपनी सीट पा लेंगे, लेकिन श्रोता साथियों यही जल्दबाजी कभी कभी किसी छोटे बच्चे को गिरा सकती है, किसी का बैग फंसा सकती है या कोई गंभीर दुर्घटना भी हो सकती है। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विषय से तो रूबरू कराई चुकी हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं स्कूल बस स्टॉप को लेकर। जी हाँ श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि कभी कभी बस आते ही कुछ बच्चे जल्दी जल्दी चढ़ने की कोशिश में धक्का मुक्की करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि पहले चढ़ जाने पर उनको पहली सीट मिल जाएगी या कोई अच्छी सीट है वो उन्हें मिल जाएगी। लेकिन श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि इसी धक्का मुक्की के चक्कर में किसी बच्चे को चोट लग जाती है, किसी का बस्ता फंस जाता है या कोई बच्चा गिर जाता है। श्रोता साथियों, सुरक्षा केवल अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथ खड़े हर बच्चे की जिम्मेदारी है। एक समझदार विद्यार्थी वही है जो खुद सुरक्षित रहे और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखे। इसी सोच और सीख के साथ आइए श्रोता साथियों सुनते ही आज का प्रेरणादायक नाटक बस का इंतजार करते समय धक्का मुक्की न करें।
1: अरे, आज बस आने में इतनी देर क्यों हो गई? मुझे तो लग रहा है कि आज फिर भीड़ बहुत होगी।
2: बस 5 मिनट देर हो जाए तो सबको लगता है कि आज बहुत देर हो गई।
1: तुम्हें चिंता नहीं होती क्या?
2: नहीं चार्वी, चिंता बस देर से आने की नहीं होती। चिंता तब होती है जब बस आते ही सब बच्चे बिना सोचे समझे दौड़ पड़ते हैं।
1: अरे, थोड़ा बहुत धक्का मुक्की तो चलता है, नहीं तो सीट कैसे मिलेगी?
2: तुम्हें सच में ऐसा लगता है?
1: हाँ, जो पहले चढ़ गया वही आराम से बैठेगा ना।
2: और अगर उस जल्दी में कोई छोटा बच्चा गिर जाए तो?
1: ओ हाँ, ऐसा भी हो सकता है।
2: हो सकता है नहीं, कई बार होता है। पिछले महीने मैंने देखा था कि एक बच्चा धक्का लगने से गिर गया था और उसके हाथ में गंभीर चोटें आई थी और कई दिनों तक वह स्कूल भी नहीं आ पाया था।
1: सच में?
2: हाँ सच में। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये थी कि धक्का देने वाला बच्चा जानबूझकर बुरा नहीं करना चाहता था, वह सिर्फ जल्दी में था।
1: मतलब कभी कभी हमारी जल्दबाजी किसी दूसरे के लिए परेशानी भी बन सकती है।
2: हाँ बिल्कुल बन सकती है। इसलिए अनुशासन का मतलब सिर्फ नियम मानना नहीं होता चार्वी, बल्कि दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है।
1: लेकिन अगर हम लाइन में खड़े रहे और दूसरे बच्चे धक्का देकर आगे निकल जाए तब क्या करें?
2: अच्छी आदतें इसलिए नहीं छोड़ी जाती कि दूसरे उनका पालन नहीं कर रहे हो, कोई तो शुरुआत करेगा ही ना। अगर हम सही उदाहरण बनेंगे ना चार्वी, तो धीरे धीरे दूसरे भी हमारी बातों को सीखेंगे।
1: तुम्हारी बातें सुनकर नैना, मुझे लगता है कि बस स्टॉप भी सीखने की जगह है।
2: बिल्कुल है, किताबें हमें पढ़ाई सिखाती है लेकिन रोजमर्रा की ऐसी जगह है वो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। तभी दूर से स्कूल बस दिखाई देती है, कुछ बच्चे आगे बढ़ने लगते हैं, चार्वी भी उत्साहित होकर एक कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन फिर नैना की बात याद करके रुक जाती है।
1: नहीं, आज मैं लाइन नहीं तोड़ूंगी।
2: हाँ यही तो समझदारी है।
1: नैना देखो, सब कितनी जल्दी कर रहे हैं। अगर हम ऐसे ही खड़े रहे तो शायद हमें सीट नहीं मिलेगी।
2: सीट तो बाद में भी मिल जाएगी चार्वी, लेकिन अगर किसी को चोट लग गई तो वह दर्द जल्दी नहीं जाएगा।
1: पहले मैं भी यही सोचती थी कि जो तेज दौड़ेगा वही जीत जाएगा, लेकिन आज लग रहा है कि हर जगह दौड़ना समझदारी नहीं होती।
2: बिल्कुल, कुछ जगहों पर धैर्य ही सबसे बड़ी समझदारी होती है, पता है तुम्हें?
1: रुको, पहले इसका बैग उठा लेते हैं। लो आराम से जोड़ो, कोई जल्दी नहीं है।
2: देखा चार्वी, अगर तुम भी भीड़ के साथ दौड़ जाती तो शायद ये बच्ची और ज्यादा घबरा जाती।
1: सच कहूँ अभी मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पहले सिर्फ मैं अपनी सीट के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब समझ में आया कि किसी की मदद करना सीट मिलने से कहीं ज्यादा खुशी देता है।
2: बिल्कुल, यही तो असली शिक्षा है। अच्छा विद्यार्थी केवल किताबों से अच्छा नहीं होता, बल्कि अपने व्यवहार से भी अच्छा होता है।
1: नैना, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी एक अच्छी आदत से दूसरे बच्चे भी बदल सकते हैं?
2: क्यों नहीं चार्वी, अच्छी आदतें फैलती भी तो है। जैसे एक बच्चा लाइन में खड़ा होता है, फिर दूसरा भी सोचता है कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। एक बच्चा किसी की मदद करता है तो बाकी बच्चों को भी तो इससे प्रेरणा मिलती है।
1: मतलब बदलाव हमेशा कह सकते हैं नैना कि एक इंसान से शुरू होता है।
2: बिल्कुल, अगर हम ये सोच कर चुप रहें कि सब ऐसा ही करते हैं तो कभी कोई बदलाव नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर हम सही काम करना शुरू करें तो धीरे धीरे हम माहौल बदल सकते हैं।
1: नैना, देखा, सीट तो नहीं मिली,
2: लेकिन चार्वी मन की खुशी तो मिल गई ना।
1: और सबसे बड़ी बात, आज किसी को हमारी वजह से चोट भी नहीं लगी।
2: बिल्कुल, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है।
1: नैना, आज से मैं हर सुबह बस स्टॉप पर सबसे पहले लाइन बनाने की कोशिश करूंगी। और अगर कोई धक्का देगा तो मैं गुस्सा नहीं करूंगी, प्यार से समझाऊंगी कि सुरक्षित रहना सबसे जरूरी है।
2: बिल्कुल चार्वी, यही जिम्मेदार विद्यार्थी की पहचान है।
0: श्रोता साथियों, आज के इस छोटे से नाटक ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। अक्सर हम सोचते हैं कि बस में सबसे पहले चढ़ जाना ही समझदारी है, लेकिन सच तो यह है कि सुरक्षित रहकर दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बस में चढ़ना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। केवल एक बुरी आदत नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि यह किसी दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। एक छोटी सी जल्दबाजी किसी बच्चे को गिरा सकती है, किसी का बैग सड़क पर गिर सकता है, किसी को गंभीर चोट लग सकती है, और कई बार श्रोता साथियों एक छोटी सी लापरवाही जीवन भर का पछतावा भी बन सकती है। इसलिए हर बच्चे को यह समझना चाहिए कि कुछ पल का इंतजार करना नुकसान नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। स्कूल हमें केवल किताबों का ज्ञान नहीं देता है बल्कि अनुशासन, सहयोग, धैर्य और जिम्मेदारी का पाठ भी पढ़ाता है। बस स्टॉप भी एक ऐसी ही जगह है जहां हम अपने व्यवहार को साबित कर सकते हैं कि हम अच्छे विद्यार्थी होने के साथ साथ जिम्मेदार नागरिक भी बन रहे हैं। जब हम लाइन बनाकर खड़े होते हैं, छोटे बच्चों को पहले चढ़ने देते हैं, धक्का मुक्की नहीं करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तब श्रोता साथियों केवल हम नियमों का पालन नहीं करते बल्कि दूसरों के जीवन की सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। प्रिय अभिभावकों और शिक्षकों, बच्चों को केवल यह न बताएं कि धक्का मुक्की मत करो, बल्कि उन्हें यह समझाइए कि उसके पीछे का कारण क्या है। श्रोता साथियों, जब बच्चे नियमों का महत्व समझते हैं तब वे उसे मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझकर निभाते हैं। बच्चों की अच्छी आदतें श्रोता साथियों घर, स्कूल और समाज तीनों जगहों से मिलकर बनती हैं। बच्चों याद रखिए, बस सबसे पहले पकड़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने साथ खड़े हर बच्चे को सुरक्षित रखते हुए बस में चढ़ना ही बहुत बड़ी बात है। अच्छी पहचान तेज दौड़ने से नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार से बनती है। अनुशासन हमें छोटा नहीं बनाता श्रोता साथियों, बल्कि हमारा व्यक्तित्व बड़ा बनाता है। जो बच्चा दूसरों की सुरक्षा का सम्मान करता है वही आगे चलकर समाज का जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनता है। तो आइए बच्चों, आज यह संकल्प ले कि हम बस स्टॉप पर कभी धक्का मुक्की नहीं करेंगे, हमेशा लाइन बनाकर बस पर चढ़ेंगे और छोटे बच्चों, बुजुर्गों और जरूरतमंदों का ध्यान रखेंगे। जल्दबाजी नहीं, समझदारी को अपनी आदत बनाएंगे और हर दिन अपने अच्छे व्यवहार से दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेंगे। याद रखिए बच्चों, सुरक्षा से बड़ा कोई इनाम नहीं, अनुशासन से बड़ी कोई पहचान नहीं, धैर्य रखने वाला कभी हारता नहीं है बच्चों, और दूसरों का ध्यान रखने वाला कभी छोटा नहीं होता। एक छोटी सी अच्छी आदत पूरे समाज को सुरक्षित और सुंदर बना सकती है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ ही श्रोता साथियों, आज के कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के इस गीत के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, जो नाटक रहा, वो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागुर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जूनू हवार। सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी ने मक्का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है। सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके। शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जय वरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा। शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जागृति बुन आपे कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है।
4: नाना अंजलि बुन हूँ था का।
3: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएंगा। खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बुन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है। पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
3: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
3: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है। हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: भाई ने बोनो आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां या आपड़े नी कितली शांति मिले है। जैया हवा में आपड़े हाल हां ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नथी बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
3: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो।
5: होवे आज नाना ना कदम है ई अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: थारी में पासो लावो जूनू हवार। सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी ने मक्का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर और आपके अपने साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।
1: जी हाँ श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है, बिना शिकायत समाधान की संस्कृति कैसे बने। जैसा कि अंजलि, शिकायत करना बहुत आसान है लेकिन समाधान बनना साहस की पहचान है।
0: बिल्कुल,
1: जिस समाज में लोग केवल समस्याएं गिनाने के बजाय उनके समाधान खोजने लगते हैं, वहीं से विकास, विश्वास और सच्चे स्वराज की शुरुआत होती है। अगर हर व्यक्ति ये संकल्प ले ले कि वो केवल क्या गलत है नहीं बल्कि क्या सही है किया जा सकता है इस पर विचार करेगा, तो परिवार, समाज, कार्यस्थल और पूरा देश सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहने वाली है, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनाते हैं हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला यह गीत। तो साथियों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था और बातचीत भी रही थी हमारी, कि आज हम बात करने वाले हैं बिना शिकायत समाधान की संस्कृति हम किस तरह से बन सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि शिकायतें परिस्थितियों को नहीं बदलती, लेकिन समाधान खोजने की सोच इतिहास बदल सकती है।
1: बिल्कुल।
0: जब हर नागरिक समस्या का दर्शक नहीं बल्कि समाधान का सहभागी बनेगा, तभी सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र और सच्चे स्वराज का सपना साकार होता है।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि समस्याएं हर समाज, हर परिवार और हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होती है, लेकिन किसी समाज की वास्तविक पहचान इस बात से होती है कि वह समस्याओं पर कितना समय शिकायत करने में लगा देता है और कितना समय उनके समाधान खोजने में। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि शिकायत करना आसान है, लेकिन समाधान बनाना साहस, जिम्मेदारी और सकारात्मक सोच की पहचान है।
0: बिल्कुल।
1: जिस समाज में लोग केवल कमियां गिनाने के बजाय उन्हें दूर करने के लिए आगे जाते हैं, वही समाज निरंतर प्रगति करता है। आज हम अक्सर सुनते हैं जागृति जी कि सरकार यह नहीं कर रही, समय बदल नहीं रहा, व्यवस्था ठीक नहीं है, लोग सहयोग नहीं करते। लेकिन यदि हम स्वयं से यह प्रश्न पूछें कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो यही प्रश्न परिवर्तन की शुरुआत बन सकता है। बिना शिकायत समाधान की संस्कृति केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन जीने का ऐसा तरीका है श्रोता साथियों, जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों को आगे बढ़ाता है। यही जागृति जी सच्चे स्वराज की भावना भी हमें सिखाती है कि अधिकारों के साथ कर्तव्यों का पालन करें और समस्याओं के समाधान में अपनी भूमिका निभाएं।
0: बिल्कुल अंजनी, क्योंकि आज का समय बहुत तेजी से बदल रहा है। हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों ने अपनी बात रखना आसान बना दिया है।
1: बिल्कुल।
0: ये अच्छी बात है श्रोता साथियों कि लोग अपनी समस्याएं खुलकर रखते हैं, लेकिन कई बार ये आदत केवल शिकायत तक सीमित रह जाती है। लोग समाधान खोजने या उसके लिए प्रयास करने के बजाय दोषारोपण में समय बिताने लगे हैं।
1: जी हाँ।
0: इसका प्रमुख कारण ये है कि जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति हो गई है लोगों में, नकारात्मक सोच का बढ़ना हो गया है, धैर्य की कमी हो गई है, दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भरता हो गई है और सामूहिक प्रयासों में विश्वास की कमी हो गई है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, अगर यही प्रवृत्ति लगातार बढ़ती रही तो समाज में निराशा और असंतोष, साथ में अविश्वास भी बढ़ता जाएगा।
1: जी हाँ जागृति जी, यही बात करें कि समाधान की संस्कृति आखिरकार क्या है, तो श्रोता साथियों, समाधान की संस्कृति का अर्थ है किसी भी समस्या को देखकर केवल उसकी आलोचना न करें, बल्कि यह सोचें कि उसे कैसे सुधारा जा सकता है। यह संस्कृति व्यक्ति को सक्रिय बनाती है, वह समस्याओं का हिस्सा नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बन जाता है।
0: बिल्कुल।
1: समाधान की संस्कृति हमें सिखाती है श्रोता साथियों कि शिकायत कम, प्रयास अधिक करें, आलोचना कम, सहयोग अधिक करें, दोषारोपण कम, जिम्मेदारी अधिक निभाएं, निराशा कम और आशा अधिक रखें। यानी कि श्रोता साथियों, समाधान की संस्कृति हमें कई ऐसी चीजें सिखाती है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल अंजलि, और यही हमारे श्रोता साथियों को हम बताते हैं कि समाधान की संस्कृति को हम किस तरह से विकसित कर सकते हैं। जैसे कि हर परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है, यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से पालन करता है तो अनेक समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। घर की स्वच्छता, विद्यालय का अनुशासन, कार्यालय की ईमानदारी या समाज की व्यवस्था, हम देखते हैं कि हर जगह हमारी छोटी छोटी जिम्मेदारियां बड़ा परिवर्तन ला सकती है। अगर किसी सड़क में गड्ढा है श्रोताओं, विद्यालय में कोई कमी है या गांव में पानी की समस्या है, तो केवल शिकायत करने के बजाय संबंधित विभाग को सूचना देना होगा, प्रतिनिधियों से संवाद करना होगा, सामूहिक प्रयास करके और अधिक प्रभावी बनाना होगा, क्योंकि हर शिकायत के साथ कम से कम एक समाधान अवश्य हमें सोचना होगा।
1: जी हाँ जागृति जी, यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि सकारात्मक सोच का अर्थ समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं होता, बल्कि विश्वास रखना है कि उसका समाधान संभव है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अवसर खोजते हैं, वही आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: यही अब बात आती है संवाद और सहयोग के बढ़ावे की, तो श्रोता साथियों, समस्याओं का समाधान केवल अकेले नहीं मिलकर होता है। परिवार में संवाद हो, समाज में सहयोग हो, कार्यालय में टीम वर्क हो और गाँव में सामूहिक निर्णय हो, तो बड़े से बड़ा परिवर्तन संभव होता है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है कि किस तरह से हमें बिना शिकायत समाधान की संस्कृति को आगे बढ़ाना है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि शिकायत की संस्कृति क्यों बढ़ रही है और समाधान की संस्कृति क्या है, और वहीं हम जान पा रहे थे कि समाधान की संस्कृति कैसे विकसित की जाए।
1: बिल्कुल,
0: जिसमें हमने जाना था जिम्मेदारी स्वीकार करने की आदत, समस्याओं के साथ समाधान भी रखें और सकारात्मक सोच और संवाद और सहयोग को बढ़ाएं। यही अब बात आती है जागृति जी, युवाओं की सक्रिय भागीदारी की। तो श्रोता साथियों, युवा किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। यदि युवा केवल सोशल मीडिया पर शिकायत करने के बजाय अपने गांव, मोहल्ले और समाज में छोटी छोटी पहल शुरू करें तो बड़ा परिवर्तन संभव हो सकता है। जैसे स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, रक्तदान, डिजिटल शिक्षा, जल संरक्षण, पुस्तकालय निर्माण, नशा मुक्ति अभियान। युवा जब जागृति जी समाधान बनते हैं तभी राष्ट्र आगे बढ़ता है।
1: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि विद्यालय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को केवल परीक्षा की तैयारी नहीं बल्कि जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने की शिक्षा भी मिलती है। प्रोजेक्ट, समूह कार्य, सामाजिक सेवा और नवाचार जैसी गतिविधियां विद्यार्थियों में समाधान की संस्कृति को विकसित करता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि एक अच्छा नेता कभी केवल समस्या नहीं गिनाता बल्कि लोगों को साथ लेकर समाधान भी खोजता है। परिवार का मुखिया, शिक्षक, अधिकारी, जनप्रतिनिधि या समाज सेवी, सभी को अपने व्यवहार से प्रेरणा देनी होगी।
0: बिल्कुल,
1: कई लोग सोचते हैं अंजलि कि अकेले हम क्या बदल सकते हैं, लेकिन जैसा कि हर कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को कहते हैं कि जितने भी महान परिवर्तन हुए हैं वो सारे महान लोगों की वजह से हुए। हम देखते हैं कि उन्होंने भी छोटे से कदम से ही शुरू किया था, जैसे कि कचरा डस्टबिन में डालना, पानी को बचाना, बिजली को बचाना, समय का सम्मान करना, दूसरों की मदद करना। ये जो छोटे छोटे कदम हैं, यही मिलकर बड़े परिवर्तन का आधार बनते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, हर समस्या हमें कुछ सिखाती है।
1: बिल्कुल,
0: यदि किसी कार्य में असफलता मिले तो शिकायत करने के बजाय ये समझना चाहिए कि अगली बार क्या सुधार किया जा सकता है। यही सोच व्यक्ति को मजबूत बनाती है।
1: जी हाँ,
0: यह समाधान की संस्कृति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है श्रोता साथियों, कि मैं क्या कर सकता हूँ की जो सोच है वो हमें स्वयं से पूछनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: यही चीज हमें योगदान देने की जो चीजें हैं उसके लिए प्रेरित करती है। यही प्रश्न समाज को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है, क्योंकि यदि समाज शिकायत छोड़कर समाधान की दिशा में आगे बढ़े तो सकारात्मक वातावरण बनेगा, लोगों में विश्वास बढ़ेगा, समय और ऊर्जा का सही उपयोग होगा और समाज में सहयोग की भावना विकसित होगी।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ जागृति जी, विकास की गति तेज होगी, युवा प्रेरित होंगे, लोकतंत्र मजबूत होगा और सच्चे स्वराज की जो भावना है वो भी साकार

0: हो पाएगी।
1: जी हाँ अंजलि, तो आज का युवा केवल नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि समाज बनाने वाला भी है। हम देखते हैं कि देश को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो हर समस्या में अवसर देखे, हर चुनौती में सीख देखे और हर कठिनाई में समाधान खोजे। मोबाइल की स्क्रीन पर शिकायत लिखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने आसपास एक छोटा सकारात्मक परिवर्तन लाएं।
0: बिल्कुल,
1: यही सच्ची देशभक्ति श्रद्धा और यही सामाजिक जिम्मेदारी है और यही उज्जवल भविष्य की नींव है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं अंजलि कि समस्या जीवन का अंत नहीं है बल्कि नई शुरुआत का अवसर है। शिकायतें केवल शोर पैदा करती है जबकि समाधान भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अपने घर, विद्यालय, कार्यस्थल और समाज में संकल्प लें कि हम केवल कमियां नहीं गिनाएंगे बल्कि उन्हें दूर करने में अपनी भूमिका भी निभाएंगे, तो परिवर्तन निश्चित है।
0: जी हाँ जागृति जी, हमें खुद से ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं शिकायत करने वाला नहीं समाधान खोजने वाला नागरिक बनूंगा, मैं दोष नहीं दायित्व चुनूंगा, मैं आलोचना नहीं सहयोग करूंगा। क्योंकि सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम कहना छोड़ देते हैं कि कोई कुछ क्यों नहीं करता और यह कहना शुरू कर देते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ।
1: बिल्कुल,
0: यही बिना शिकायत समाधान की संस्कृति है, यही सशक्त समाज की पहचान है और यही सच्चे स्वराज की दिशा में हमारा सबसे बड़ा कदम है।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए श्रोता साथियों कि शिकायत नहीं समाधान को हमें अपनाना है और इस तरीके से मिलकर हम सभी नया भारत बना सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, तो हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम शिकायतों की भीड़ का हिस्सा नहीं बने बल्कि समाधानों की पहचान बनेंगे। हम दोषारोपण नहीं करेंगे, हम दायित्व को निभाएंगे और हम आलोचना नहीं सहयोग की भावना को अपनाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जब हर नागरिक स्वयं परिवर्तन का माध्यम बनता है तभी सच्चे अर्थों में स्वराज, समृद्धि और विकास का सूर्योदय होता है। इसलिए श्रोता साथियों, समाधान की संस्कृति को अपनाइए और अपने जीवन, समाज तथा राष्ट्र को नई दिशा दीजिए, नई ऊंचाइयां प्रदान करिए और यही सच्चे स्वराज की पहचान है और यही उज्जवल भारत का भविष्य है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकर रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है पोषण क्या है और शरीर में पोषण की पूर्ति कैसे करें।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, बच्चे अच्छी तरह बढ़े, बुजुर्ग सक्रिय रहें, महिलाएं हर दिन ऊर्जा से भरपूर महसूस करें।
0: हाँ।
1: लेकिन यह तभी संभव है श्रोता साथियों जब हमारे शरीर को सही पोषण मिले। अक्सर लोग सोचते हैं कि महंगा भोजन ही पौष्टिक होता है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारे गांव, खेत और रसोई में मौजूद कई साधारण खाद्य पदार्थ भी शरीर को भरपूर पोषण दे सकते हैं। तो आज हम कार्यक्रम में यही जानेंगे पोषण क्या है, इसकी कमी से क्या समस्या होती है और हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भोजन में पोषण को कैसे शामिल कर सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विषय से तो रूबरू कराई चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं पोषण क्या है और ये हमारे शरीर में पोषण की पूर्ति कैसे करता है। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि स्वस्थ जीवन का आधार केवल पेट भरना नहीं बल्कि शरीर को सही और पर्याप्त भोजन देना है।
1: बिल्कुल,
0: आज के समय में ज्यादातर लोग, अंजलि जी, हम देखते हैं कि भोजन तो भरपूर करते हैं लेकिन फिर भी उनके शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी बनी रहती है।
1: जी हाँ,
0: इसका कारण यह है श्रोता साथियों कि हम स्वाद और सुविधा को अधिक महत्व देने लगे हैं जबकि पौष्टिक भोजन को अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: परिणाम स्वरूप अंजलि जी हम देखते हैं कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर आयु वर्ग में कुपोषण, एनीमिया, कमजोरी, मोटापा, मधुमेह और हृदय रोगों जैसी समस्याएं वो बढ़ती जा रही हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारा शरीर भोजन से आवश्यक तत्व प्राप्त करता है।
0: जी हाँ,
1: ये तत्व शरीर को ऊर्जा देने, वृद्धि करने, रोगों से लड़ने, मांसपेशियों को मजबूत बनाने और शरीर के सभी अंगों को सही ढंग से कार्य करने में सहायता करते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, जिस प्रकार किसी वाहन को सही ईंधन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार शरीर को भी संतुलित और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। यदि भोजन संतुलित नहीं होगा तो शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है।
0: जी हाँ,
1: आज हम देखते हैं मनीषा कि संतुलित आहार का हमारे जीवन में महत्व और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि आजकल लोग जो हैं वो बाहर के जो खान पान की चीजें हैं उस पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। ऐसे में संतुलित आहार वह भोजन है श्रोता साथियों जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद होते हैं।
0: जी हाँ,
1: इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, फाइबर, पर्याप्त पानी होता है। इन सभी की अपनी अपनी भूमिका होती है मनीषा।
0: जी हाँ,
1: और किसी एक की कमी भी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि पोषण का महत्व केवल शरीर को ताकत देने तक सीमित नहीं है। यह जीवन के प्रत्येक चरण में श्रोता साथियों महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: बिल्कुल,
0: जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक शरीर को लगातार पोषण की आवश्यकता होती है। बचपन में श्रोता साथियों हम देखते हैं कि पोषण है वो शरीर की लंबाई, वजन, हड्डियां और मस्तिष्क के विकास में सहायता करता है।
1: बिल्कुल,
0: यदि इस समय पोषण न मिले तो बच्चों का विकास है वो अंजलि जी प्रभावित हो सकता है। यही अगर किशोर अवस्था की बात करें तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि किशोर अवस्था में शरीर तेजी से बढ़ता है।
1: बिल्कुल,
0: इस समय पर्याप्त प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन की आवश्यकता होती है। सही पोषण से हमारा शरीर ही वो मजबूत रहता है और मानसिक क्षमता है वो विकसित होती है।
1: बिल्कुल,
0: युवा अवस्था में अंजलि जी हम देखते हैं कि पोषण है वो हमारे कार्य करने की शक्ति होती है, मानसिक एकाग्रता और रोगों से बचाव करने में सहायता करती है। श्रोता साथियों, जो व्यक्ति संतुलित भोजन करता है वह अधिक सक्रिय और ऊर्जावान रहता है।
1: बिल्कुल,
0: वृद्धावस्था में अंजलि जी हम देखते हैं कि शरीर की कार्य क्षमता वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसे समय में पौष्टिक भोजन और हल्का भोजन शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही श्रोता साथियों हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को कमजोर होने से बचाता है।
1: बिल्कुल मनीषा, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि शरीर के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो शरीर को ऊर्जा देता है। इसके लिए हम गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, आलू और शकरकंद खा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: प्रोटीन की बात करें तो यह शरीर की वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत करता है। इसके लिए हम दालें, चना, मूंग, राजमा, सोयाबीन, दूध, दही, पनीर, अंडा खा सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: वसा की बात करें तो यह शरीर को ऊर्जा देता है और शरीर को गर्म रखने में भी मदद करता है।
0: जी हाँ,
1: इसके लिए हम मूंगफली, तिल, अलसी, घी, सरसों का तेल और नारियल खा सकते हैं। और विटामिन की बात करें तो यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इसके लिए हम हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, टमाटर, संतरा, आंवला, पपीता, केला और आम खा सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि खनिज लवण भी शरीर के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये हड्डियों में खून और शरीर के अन्य कार्यों के लिए आवश्यक है। इसके लिए हम दूध, तिल, रागी, हरी सब्जियां, चना और गुड़ खा सकते हैं। फाइबर भी पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। इसके लिए हमें नियमित तौर पर सलाद, फल, साबुत अनाज और दालें खानी चाहिए। श्रोता साथियों, पानी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है।
0: जी हाँ,
1: प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी पीना भी हमारे लिए जरूरी होता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से पोषण क्या है और शरीर में पोषण की पूर्ति कैसे होती है इस विषय को लेकर हम बातें कर ही रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें हम आगे भी हमारे श्रोता साथियों से ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना मनीषा के पोषण क्या है, संतुलित आहार क्या होता है और शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं और उसमें हम कौन कौन से स्रोत शामिल कर सकते हैं। यहीं अब बात आती है कि पोषण की कमी क्यों होती है। श्रोता साथियों, इसके कई कारण हैं। जैसे कि केवल हम पेट भरने वाला भोजन खाते हैं तो इससे पोषण की पूर्ति नहीं हो पाती। हरी सब्जियां, फल कम खाना, जंक फूड का अधिक सेवन करना, भोजन समय पर न करना, बार बार बीमार पड़ना, गरीबी और भोजन की कमी, भोजन पकाने की जो गलत विधियां होती हैं उसके कारण भी हम देखते हैं कि पोषण की पूर्ति नहीं होती है और स्वच्छता के अभाव। यहीं अब बात आती है कि पोषण की कमी के क्या लक्षण होते हैं।
1: हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, यदि शरीर में पोषण की कमी है तो हम जल्दी थक जाते हैं। कमजोरी, चक्कर आना, खून की कमी, बार बार बीमार पड़ना, बच्चों का विकास रुकना, बाल झड़ना, त्वचा रूखी होना, आंखों की कमजोरी और हड्डियों में दर्द, ये कुछ ऐसे प्रभाव हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमें दिखाई दें तो तुरंत हमें हमारी दिनचर्या में बदलाव करने की जरूरत है और हमें हमारे खाने में पोषण की पूर्ति करके खुद और अपने बच्चों और अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, यहीं अगर बात करें कि पोषण की कमी का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि बच्चों के जीवन के शुरुआती वर्ष उनके संपूर्ण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यदि इस समय उन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है।
0: जी हाँ।
1: ऐसे में श्रोता साथियों, बच्चों की लंबाई और वजन सामान्य बच्चों से कम हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान लगने में कठिनाइयां होती हैं अंजलि जी, साथ ही याद रखने की क्षमता है वो कम हो जाती है और वे जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, यदि बचपन से ही पोषण की कमी लंबे समय तक बनी रही तो उसका प्रभाव बड़े होने के बाद दिखाई देता है। इसीलिए बच्चों को बचपन से ही संतुलित और पौष्टिक भोजन देना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ मनीषा, आपने सही कहा। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि शरीर में पोषण की पूर्ति हम कैसे करें, तो इसके लिए हमें थाली में रंगों का ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे कि जितनी अधिक प्राकृतिक रंग भोजन में होंगे उतने अधिक पोषक तत्व हमें मिलेंगे। बाजरा, ज्वार, रागी और मक्का पोषण से भरपूर होते हैं। कम से कम एक कटोरी दाल हमें अवश्य खानी चाहिए। इसी के साथ सप्ताह में कई बार पालक, मेथी, सरसों, चौलाई जैसी सब्जियों को हमें शामिल करना है। महंगे फलों की जगह स्थानीय और मौसमी फलों का हमें अत्यधिक सेवन करना है। इसी के साथ गुड़ चना हमें खाना है क्योंकि यह सस्ता और पौष्टिक और ऊर्जा देने वाला प्राकृतिक नाश्ता है। इसी के साथ मनीषा, हम अंकुरित अनाज को अपनी जीवन शैली में शामिल करें, जैसे कि अंकुरित मूंग और चना विटामिन और प्रोटीन का अच्छा स्रोत होते हैं। दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके स्वच्छ पानी पीते रहें। नाश्ता छोड़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए भोजन को समय पे करें। कोल्ड ड्रिंक, पैकेट वाले स्नैक और अत्यधिक तली भुनी जो चीजें होती है उससे दूर रहने की जरूरत है।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, गर्भवती महिलाओं को विशेष पोषण की आवश्यकता होती है क्योंकि माँ के साथ साथ शिशु पर दोनों पर इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। श्रोता साथियों, इसके लिए हमें पर्याप्त मात्रा में हरी सब्जियां, दूध, दाल, फल, आयरन और कैल्शियम युक्त भोजन के लिए महिलाओं को प्रेरित करने की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि पोषण स्वस्थ और सुखी जीवन की सबसे मजबूत नींव है। यदि शरीर को सही समय पर सही मात्रा में सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहे तो व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा श्रोता साथियों, बल्कि मानसिक रूप से भी सक्रिय, ऊर्जावान और आत्मविश्वासी बनता है। अच्छा पोषण बच्चों के संपूर्ण विकास, युवाओं की कार्य क्षमता, महिलाओं के स्वास्थ्य, गर्भस्थ शिशुओं को सुरक्षित विकास, साथ ही श्रोता साथियों बुजुर्ग के स्वस्थ जीवन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए पोषण को केवल भोजन तक सीमित न मानकर स्वस्थ जीवन का अभिन्न अंग हमें समझना चाहिए।
0: बिल्कुल मनीषा, यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों को कि एक स्वस्थ समाज के लिए केवल व्यक्ति नहीं पूरा समुदाय जिम्मेदार होता है।
1: जी हाँ।
0: आंगनबाड़ी, स्कूल, स्वयं सहायता समूह, किसान समूह, परिवार मिलकर पोषण वाटिका विकसित कर सकते हैं। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के भोजन पर विशेष ध्यान दे सकते हैं और स्थानीय अनाज और पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा दे सकते हैं।
1: जी
0: हाँ। गाँव में पोषण की समझ बढ़ती है तब बीमारियां घटती है और आने वाली पीढ़ी अधिक स्वस्थ बनती है। श्रोता साथियों, पोषण केवल भोजन का नाम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की आधारशिला है। शरीर जो है वो जीवन पर हमारा साथ देता है, इसलिए उसकी जरूरतों को समझना हमारी जिम्मेदारी है। स्वस्थ रहने के लिए महंगे खाद्य पदार्थों की नहीं श्रोता साथियों, बल्कि सही जानकारी, संतुलित भोजन और नियमित आदतों की आवश्यकता होती है और ये बात हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा आपको बताते रहते हैं।
1: जी हाँ,
0: आज के समय में श्रोता साथियों एक छोटा सा संकल्प हमें लेने की जरूरत है, जैसे कि हर भोजन में विविधता लाएं, स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों को अपनाएं, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के पोषण का विशेष ध्यान रखें और अपने परिवार और समुदाय में पोषण के प्रति जागरूकता फैलाएं। जब हर घर की थाली संतुलित होगी तभी हर परिवार स्वस्थ, हर बच्चा सशक्त और हर गांव समृद्ध बन पाएगा। यही स्वस्थ समाज और उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी मजबूत नींव है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है अब कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दे।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और हमारी स्वास्थ्य प्रद बातें अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, पोषण क्या है और हमारे शरीर में पोषण की पूर्ति हम कैसे करें, तो आप सभी को जरूर पसंद आई होंगी। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
0: नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। थारी में पासो लावो जोनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने मैं देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।